FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026। अभी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच

0: मंत्रिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जन संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

0: सुचित्रा बर्वे के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है आम की खेती। वाचन स्वर रुपेश कंवर का है।
1: संगवारी को राम राम, जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर। खरीफ सीजन में हमार किसान भाई मन धान पान के संगे संग बागवानी फसल कथी घलो चेत करत है। अभी के बेरा बरसाती के बेरा हवा है। अभी के बेरा में अगर हमन बागवानी फसल कथी चेत करत हन तो कहीं न कहीं हमन अवैया बेरा में दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। अब अपन जानते हवा कि बागवानी फसल के माध्यम से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार कति ले अनुदान घलो मिलत है। ओकर माध्यम से भी हमन अपन आर्थिक स्थिति ला काफ़ी सुधार कर सकत हन। संगवारी हो, आज हमन खेती की बात में अपन कर गोड़ बात करबो आमा के खेती के। आम ला फल के राजा कहे जाते संगवारी हो, अपन सब जन जाना था। और आम के खेती पर हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु की बात करबो सबसे उपयुक्त हवा। और एक बार अगर हमन आमा के रुख लगा लेन पौधा लगा लेन तो लगभग हमन 40 से 50 साल तक ओकर कमाई ला हमन पा सकत हन। खेती की बात में बात करत हन आज अपन करा आमा के खेती के। जलवायु और माटी की गोड़ बात करी तो हमारे यहाँ की जन जलवायु है और माटी हवा आमा खेती पर सबसे उपयुक्त हवा। जौन बेरा मुहूर्त हवा अगर वो बेरा पानी कांजे नहीं गिरत है तो कहीं ना कहीं हमन आमा खेती में ज्यादा से ज्यादा हमन फल के माध्यम से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। तापमान की बात करी किसान भाइयों, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक अभी बेरा भुइया कच्चा कच्चा हवा है। तो अभी बेरा अगर हम भुइया की तैयारी करके आमा खेती करत हन अच्छे से मन पैदावार घलो पा सकत हन। जोन भुइया में आमा के खेती करत हन आमा ला लगावत हन अच्छे से गहरी हमला अवार दून करके जोताई करना चाहिए और संगे संग गोबर खाद घलो मिल जाना चाहिए। पहली हमला 10 से 12 फीट के अंतर्गत गुच्छा खन देना चाहिए ताकि वहाँ हम अच्छे से आमा के जोन पौधा है ओला लगा सकत हन। भुइया की बात करी संगवारी हो, बलुई माटी है, डुमट माटी है सबसे उपयुक्त रहते। ये बात की विशेष करके चेत करना चाहिए कि अभी बरसात के बेरा हवा है तब पानी के ठहराव बिल्कुल झन हो। भुइया के पीएच के मान की बात करी किसान भाइयों, 5.5 से 7.5 अगर हुआ थे सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। अभी के बेरा में हमारे किसान भाई मन आमा की खेती करत हवा, आमा के पौधा लगात हवा तो प्रयास रहे कि हम जो ढलान वाला भुइया हवा वो भुइया में अगर लगावत हन तो इमें जल भराव के संभावना बहुत ही कम रहते और हमला देख रेख करे के आवश्यकता बहुत ही कम रहते हैं। खेत खार है तो मेड़ में हम लगा सकत हन, टिकरा हवा है उमा लगा सकत हन, मरघटिया हवा है उमा लगा सकत हन। और अभी गर्मी के सीजन में मनरेगा के माध्यम से तालाब की घरीकरण करे हवन तो नवा

0: हवा माटी हवा जो मेड़ हवा ओमा हमन अच्छे से आम के पौधा है ओला लगा सकत हन। जौन पौधा लगावतन किसान भाई ओकर बारे में हमन ला विशेष करके उद्यान विभाग के अधिकारी कर हमन ला सलाह लेना चाहिए और संगे सब जौन किसम हवा ओकर हमन ला विशेष करके चेत करना चाहिए कि कौन किसम हमार भुइया बर सबसे उपयुक्त रही। जैसे उन्नत किस्म की बात करी किसान भाई हो तो जैसे जल्दी पकते थे दर्शरी हवा है, बम्बई है, मध्यम वाला है, लंगड़ा, चौसा, लेट पके वाला है, फलजी, लीलम, बौनी सघन वाला है, आम्रपाली, मल्लिका। एक एकड़ पाछू की बात करी संगवारी हो, एक एकड़ में हमन ला 200 से 250 पौधा हमन लगा सकत हन। पौधा रोपाई के बात करी किसान भाई हो तो अभी के जो बेरा हवा जुलाई से अगस्त के बीच में एला हमन अभी लगा सकत हन। गड्ढा की बात करी एक गुड़ित मीटर गड्ढा एक महीना पहले हमें खुदाई करके छोड़ देना चाहिए। यानी अभी हमन खुदाई करतन तो अगस्त के महीना में 15 अगस्त के आसपास हमने लगा सकतन। खाद और गड्ढा की बात करी किसान भाई हो 20 किलो गोबर खाद, 1 किलोग्राम नीम खल्ली, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्ट हमें मिला देना चाहिए। पौधा की धुरिया की बात करी संगवारी हो तो बड़े किस्म ला 10 मीटर सघन हवा वाला 5x5 मीटर हमें लगाना चाहिए। रोपाई की बात करी किसान भाई हो तो हमला बिहना कन नहीं लगाना चाहिए बल्कि संझा कन हमला पौधा के रोपाई करना चाहिए। ओकर बाद हमला हल्का माध्यम से पानी के छिड़काव करना बहुत ही आवश्यकता घलो होते हैं। खातू माटी की बात करें किसान भाइयों 1 से 3 साल तक हमला गोबर खाद 10 किलोग्राम, एनपीके 100-50 किलोग्राम, 4 से 10 साल के बाद में हम बात करें किसान भाइयों गोबर खाद 25 किलोग्राम, एनपीके रही आपके 500 ग्राम, 10 साल के बाद ऊपर की गोड़ बात करें किसान भाइयों 50 किलो गोबर खाद हमन अपन जो पौधा है वो हमन दे सकत। संगवारी हो अभी के बेरा उपयुक्त हवे तो अगर हमन ला लंबा बेरा तक आमा के पौधा से फल के माध्यम से आमदनी कमाना हवे तो अपन अपन लखठा के जन उद्यान विभाग हवे वहाँ के अधिकारी कर संपर्क करके राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से अपन आमा खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत है।
1: आम की खेती इस विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायिका है अनुराधा पौडवाल, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरित मानस गान। मुख्य गायिका थी अनुराधा पौडवाल। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। नव विहान में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर। श्रोताओं कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो हर सपना पूरा करने की शक्ति हमारे भीतर होती है। लेकिन अगर स्वास्थ्य साथ ना दे तो धन, पद और सुविधाएं भी अधूरी लगने लगती हैं। ज़रा सोचिए, अगर किसी परिवार का कमाने वाला व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले असर किस पर पड़ता है? घर की आर्थिक स्थिति पर, बच्चों की पढ़ाई पर और पूरे परिवार की खुशियों पर। यही बात पूरे देश पर भी लागू होती है। अगर देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तभी वो मेहनत करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। यही सोच भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन के पीछे भी रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। इससे पहले वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना था। बाद में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य को भी इसमें शामिल कर दोनों को मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM बनाया गया, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि देश का कोई भी नागरिक केवल आर्थिक तंगी या असुविधाओं की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। विशेष रूप से माताओं, नवजात शिशुओं, बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आम जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस मिशन के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में मुफ्त या कम लागत पर स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर देखभाल, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, बच्चों का नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएँ, क्षय रोग यानी TB, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम और उपचार, गैर संचार

सारी रोगों जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच और मानसिक स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने आशा कार्यकर्ता यानी हेल्थ एक्टिविस्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराती हैं, बच्चों के टीकाकरण की जानकारी देती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाती हैं और ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में भी सहायता करती हैं। श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके लिए अलग से कोई ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता हो। ये एक व्यापक सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत मिलने वाली सेवाओं का लाभ आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं। अगर कोई महिला गर्भवती है, बच्चे का टीकाकरण कराना है, स्वास्थ्य जांच करानी है या किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेना है तो वो अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकती है। वहीं से आवश्यक जानकारी और सहायता मिल जाती है। नव विहान में आज चर्चा का विषय था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे। हर रोज की तरह सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। गांधी चर्चा का समय होगा सुबह 7:20 पर। आज का विषय होगा मानव से महात्मा। सुबह 7:30 पर आनंद लीजिएगा यादों के झरोखे से कार्यक्रम का। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, जिसमें आप सुनेंगे मोर ध्वज राजा का किस्सा, ईश्वरगिरी गोस्वामी, गुलाबगिरी और साथी के स्वर में। साथ ही में राज भजन सुनिएगा कमलेंद्र मरावी, सुखराम सिदार, त्रिभुवन सिंह, प्रीतम मरावी और साथियों के स्वरों में। कार्यक्रम आपकी पसंद हम पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा सुबह 11:00।

संध्या 5 बजे समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का। संध्या 5:05 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युवा जगत हम लेकर आएंगे संध्या 5:35 पर। आज की बात में चर्चा का विषय होगा मुश्किल घड़ी में साहस का परिचय कैसे दें। क्रम होगा समसामयिकी और सवाल जवाब का। शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे समय होगा कार्यक्रम। ईमेल करें।

सुनेगा। शाम 7:20 पर हम पेश करेंगे ग्राम सभा। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा फसलों में खरपतवार नियंत्रण। शाम 7:30 पर फोन इन कार्यक्रम में वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता, कुत्तों के काटने से होने वाले रैबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय विषयों पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर आर एम त्रिपाठी। कार्यक्रम के संचालक होंगे मंगू भैया। रात्रि 8:15 पर हम बिखेरेंगे महक कार्यक्रम रजनीगंधा की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ ना जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के

0: साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे इन समाचारों को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

0: आज सुबह।
1: आकाशवाणी के इस प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस नई सुबह की ताजगी के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

श्रोताओं, आज सुबह जब हम अपने घर से स्टूडियो के लिए निकल रहे थे तो रास्ते भर एक बात मन में बार बार आ रही थी। सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी, कहीं बिल्कुल नई चमचमाती चौड़ी सड़कें थीं तो कहीं कुछ गड्ढे भी थे जो शायद मरम्मत का इंतज़ार कर रहे थे। रास्ते में ऊंची ऊंची इमारतें दिखीं, बड़े बड़े होटल्स, फ्लाईओवर, ट्रैफिक सिग्नल, गार्डन और फिर एक सरकारी अस्पताल भी नज़र आया। थोड़ी दूर में सेंट्रल लाइब्रेरी और कुछ सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स भी नज़र आए। इन सब को देखते देखते आकाशवाणी बिलासपुर के परिसर तो पहुंच गए, लेकिन मन में एक सवाल आया कि आखिर ये सब बनाता कौन है? इन सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, पुल, रेलवे लाइन, बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्थाएं, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो पहला जवाब मन में आया कि ये सब तो हमारी सरकार ही बनाती है। मगर फिर अगला सवाल आया कि सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आता है? यहीं से याद आया कि इस व्यवस्था की एक मजबूत नींव है टैक्स, यानी कर। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम टैक्स ना दें तो उससे क्या होगा? तो श्रोताओं

ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर सरकार के पास विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा तो नई सड़कें नहीं बन पाएंगी, अस्पतालों और स्कूलों का विस्तार कठिन हो जाएगा, रेलवे, मेट्रो, सिंचाई परियोजनाएं, डिजिटल सेवाएं, रक्षा व्यवस्था, पुलिस, न्याय व्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान, किसानों और विद्यार्थियों के लिए कई सरकारी योजनाएं, इन सब के संचालन में कठिनाई आएगी। यानी टैक्स केवल सरकार की आय नहीं बल्कि देश के विकास का ईंधन है। सिर्फ नौकरी पेशा या बड़ा व्यापारी ही अकेले कर नहीं देते, बल्कि हम में से लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में टैक्स देते ही हैं। अगर आपकी आय आयकर कानून के अनुसार निर्धारित सीमा से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स देते हैं। उसके अलावा बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, होटल में भोजन करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, कई तरह की सेवाओं का उपयोग करते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तब हम वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के रूप में टैक्स का भुगतान करते हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर भी कई प्रकार के कर लगते हैं। यानी प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हम सभी किसी न किसी रूप में देश के विकास में आर्थिक योगदान देते हैं। और 24 जुलाई को हर वर्ष हम आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे मनाते हैं। 24 जुलाई सन 1860 को भारत में पहली बार आयकर व्यवस्था लागू की गई थी। और आज का ये दिन सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि एक नागरिक के रूप में देश के विकास में हमारी भी भागीदारी है। जब हम ईमानदारी से अपना आयकर भरते हैं तो वो सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के बेहतर भविष्य में भी अपना योगदान देना है। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है कि टैक्स का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जनहित में हो। एक मजबूत लोकतंत्र में नागरिक अपने कर्तव्य निभाते हैं और सरकार उन संसाधनों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए करती है। यही विश्वास किसी भी देश की प्रगति की सबसे बड़ी ताकत बनता है। आयकर दिवस हमें यही संदेश देता है कि टैक्स केवल एक आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारी साझेदारी है।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध हैं। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी। आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
4: लीजिए अब पेश करते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
5: नमस्कार मित्रों, यातायात संबंधी दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट आप बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा एवं भगवान बलभद्र जी की बौना यात्रा निकाली जा रही है। श्री श्री जगन्नाथ सेवा समिति रेलवे क्षेत्र बिलासपुर के तत्वावधान में यह विशाल आयोजन होने जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बहुणा यात्रा आज दोपहर 2 बजे मौसीमा मंदिर अर्थात ओडिया समाज के जन्माष्टमी मंडप से प्रारंभ होगी, जो मां काली मंदिर, थाना तोरवा, रेलवे जीएम कार्यालय, आरटीएस कॉलोनी, जगमल चौक, गांधी चौक, शिवटाकी चौक, तारबहार चौक, गिरजा चौक, रेलवे स्टेशन तितली चौक होते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। इस बहुणा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर रथ की डोर खींचते हैं। अत्यधिक जनसमुदाय होने से धक्का मुक्की कारण लोगों के गिरने की आशंका बनी रहती है, इसलिए पूरी सावधानी अपनाएं तथा इस भीड़ से छोटे बच्चों, कमजोर, बीमार

0: अथवा वृद्ध व्यक्तियों को दूर ही रखें। मित्रों, चूंकि रथ यात्रा का प्रस्तावित मार्ग ही रेलवे स्टेशन जाने का भी रास्ता है, इसलिए बहुणा यात्रा प्रबंध समिति एवं इस धार्मिक यात्रा में शामिल आम जनों से अनुरोध है, सड़क के एक किनारे चलें ताकि ट्रेन पकड़ने जा रहे लोगों को विलंब ना हो, कोई गाड़ी पकड़ने से ना चूके। इसके अलावा बहुणा यात्रा के दौरान रास्ते में कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के आने पर उसे तत्काल साइड देवें। अनेकों स्थानों में यातायात व्यवस्था संभाल रहे पुलिस कर्मचारियों के संकेतों का पूरी तरह पालन भी करें। दोस्तों, शहर में विभिन्न ईंधनों से चलने वाली लगभग 10,000 से अधिक ऑटो संचालित है। सभी ऑटो चालकों में एक रूपता तथा अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने हेतु स्त्री पुरुष चालकों के लिए पृथक पृथक वर्दी या वेशभूषा निश्चित की गई है। इस वर्दी के पहनने के बाद ही ऑटो चलाना चाहिए। बिना निर्धारित वर्दी पहने ऑटो चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, अतः हमेशा निश्चित वर्दी पहनकर ही ऑटो चलावें। वर्तमान में ऐसे चालकों पर कार्रवाई की विशेष मुहिम चलाई गई है, अतः सतर्क रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, हम फिर आपसे मिलेंगे किसी और दिन ढेरों जानकारियों और गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा। आज का विषय है मानव से महात्मा।

गांधी चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बर्बर दमन की सूचना ने भारत में खलबली मचा दी थी। गोखले ने गांधी जी की सहायता के लिए दो उत्साही ईसाई युवकों सीएफ एंड्रयूज और पियर्सन को वहां भेजा। उस समय के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने साहसपूर्वक दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नीतियों की भर्त्सना की। भारत और ब्रिटिश सरकार का दबाव पड़ने के कारण गांधी जी और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई। अंततः एक समझौता हुआ। जिन प्रमुख मांगों को लेकर सत्याग्रह संघर्ष चलाया गया था वे स्वीकार कर ली गई। गिरमिट मुक्त मजदूरों पर लगाया गया 3 पाउंड का कर रद्द कर दिया गया। भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न विवाहों को वैधता दी गई। अंगूठे की छाप वाले आदिवासी प्रमाण पत्र को दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करने और रहने के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सत्याग्रह संग्राम के करीब 4वीं शताब्दी बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मुख्य विरोधी जनरल स्मट्स ने लिखा था, गांधी जी जो थोड़ा सा विश्राम और एकांत चाहते थे वो उन्हें जेल में मिल गया। उनके लिए तो मानो सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही हो रहा था। कानून और व्यवस्था के संरक्षक के रूप में मुसीबत तो मेरी थी। एक ऐसे कानून को अमल में लाने का कलंक जिसके पीछे किसी प्रकार का दृढ़ जनमत नहीं था, और फिर उसी कानून को वापस लेने की हार। लेकिन गांधी जी को क्या, उनका व्यू भेदन तो सफल हो गया था। इस कारावास में गांधी जी ने जनरल स्मर्ट्स के लिए एक जोड़ी चप्पल खुद बनाई थी। जनरल ने बाद में लिखा कि उनके मन में भी गांधी जी के प्रति किसी तरह का व्यक्तिगत द्वेष या घृणा भाव नहीं था। जब लड़ाई खत्म हो गई थी तो दोनों के बीच ऐसा सुखद वातावरण पैदा हो गया जिसमें शांति और सौहार्द की स्थापना हो सके। गांधी जी ने 1914 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ा।

गांधी जी का ये प्रिय भजन अभी आपने सुना। गांधी चर्चा में हम बातचीत कर रहे थे। गांधी जी ने 1914 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ा था। वो एक व्यवसायिक फर्म के सहायक वकील की हैसियत से 105 पाउंड वार्षिक मेहनताने पर वहां गए थे। फिर वहीं रुक गए और चोटी के वकील बनकर 5000 पाउंड वार्षिक की वकालत जमा ली और उसे स्वेच्छा से छोड़ भी दिया। वकालत शुरू करने के पहले दिन बंबई की अदालत में एक मामूली से मुकदमे में जिरह करते समय उनके हाथ पैर ढीले हो गए थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नया राजनीतिक संगठन बना डाला और एक अनुभवी नेता किसी कुशलता से उसे चलाया भी। वहां के गोरे अधिकारियों और कूटनीतिज्ञों के द्वेष भाव और भारतीय व्यापारियों और मजदूरों की असहाय अवस्था ने उनके अंतस्थ शौर्य और साहस को जगा दिया था। कोई बड़ा पुरस्कार तो उन्हें मिलना न था, उल्टे खतरे बहुत बड़े थे। वकालत का धंधा चौपट होने से लेकर जान से मार दिए जाने तक। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वकालत और सार्वजनिक कार्य आरंभ करना उनके लिए सौभाग्यपूर्ण ही सिद्ध हुआ। भारत में महान नेताओं और धुरंधर वकीलों के सामने उन्हें कौन पूछता। अपने देश में नेतृत्व का गुण और पहल करने की प्रतिभा शायद ही उनमें विकसित हो पाती। 25 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तो यह क्षेत्र बिल्कुल खाली पड़ा था। अतः वो उन विचारों पर पूरी आज़ादी से अमल कर सके जिनकी किसी भी सुव्यवस्थित राजनीतिक संगठन में खिल्ली उड़ाई जाती। सत्य और प्रतिज्ञाओं का भला राजनीति से क्या संबंध? बाद में यही प्रश्न बार बार भारत में भी उठा और यदि गांधी जी विचलित नहीं हुए तो इसका कारण यही था कि दक्षिण अफ्रीका में काफी समय पहले वो राजनीति से इनका संबंध जोड़ चुके थे और इसकी पुष्टि भी कर चुके थे। ऐसी जगह काम शुरू करना जहां न तो पेशेवर राजनीतिक थे और न राजनीतिक जंजीरों का कोई बंधन, अवश्य ही उस व्यक्ति के लिए लाभदायक था जिसे राजनीति शास्त्र का ज्ञान नहीं था और जिनके सिद्धांत आचरण पर ही आधारित होते थे। नेटाल और ट्रांसवाल भारत के छोटे से छोटे प्रदेश से बड़े नहीं है। गांधी जी द्वारा भारत की आजादी की लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर लड़ी गई और यहां की समस्याएं भी बहुत बड़ी थी। लेकिन ऐसे बहुत से अवसर आए जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों से प्रेरणा मिली। गांधी जी की राजनीतिक नीतियों ने ही नहीं, उनके व्यक्तित्व ने भी दक्षिण अफ्रीका में रूपाकार प्राप्त

उनके जीवन के निर्माण काल का अधिकांश समय भी वहीं बीता। नैतिक और धार्मिक प्रश्नों में उनकी रुचि तो बचपन से ही थी, लेकिन इनके विधिवत अध्ययन का अवसर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में ही मिला। प्रिटोरिया के क्वेकर यानी ईसाइयों के एक संप्रदाय जो सादगी और सरल व्यवहार पर बहुत जोर देता था और इनर लाइट अथवा आंतरिक ज्योति में विश्वास करता था। इसकी स्थापना 1650 में सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स अथवा मित्र मंडली के नाम से हुई थी। क्योंकि भावावेश में इनका शरीर कांपने लगता था, इसलिए उपहास के रूप में लोग इन्हें क्वेकर्स अथवा कंपायमान शरीर वाले कहने लगे। प्रिटोरिया में यही क्वेकर मित्र उन्हें ईसाई तो न बना सके, पर धर्म संबंधी अध्ययन की उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा को अवश्य ही तीव्र कर दिया। उसके बाद तो अपने धर्म के अतिरिक्त उन्होंने ईसाई और दूसरे धर्मों का भी गंभीर अध्ययन किया। अफ्रीका प्रवास के प्रथम वर्ष में उन्होंने करीब 80 पुस्तकें पढ़ी, जिनमें बहुत सी धर्म सिद्धांतों पर थी। इनमें से एक थी टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू, यानी बैकुंठ तुम्हारे हृदय में है। टॉलस्टॉय की पुस्तकों पर वो मुग्ध हो गए और आने वाले वर्षों में उन्होंने गॉस्पेल्स इन ब्रीफ यानी संक्षिप्त सुसमाचार, व्हाट टू डू यानी क्या करें, स्लेवरी ऑफ आवर टाइम्स यानी हमारे जमाने की गुलामी, हाउ शैल वी एस्केप यानी हम कैसे भागें, लेटर्स टू ए हिंदू एक हिंदू को लिखे पत्र, और ये फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम पढ़ डाले। टॉलस्टॉय के निर्भीक आदर्शवाद और स्पष्टवादिता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। ईसाई विद्रोही टॉलस्टॉय ने संस्थागत धर्म के प्रति उनकी आस्था को दूर किया। नित्य प्रति के जीवन को नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाने पर जो बल टॉलस्टॉय ने दिया था, उससे उन्हें अपने में सुधार के प्रयास को समर्थन मिला। शायद ही कुछ लोगों ने इतना कम पढ़कर उससे इतना लाभ उठाया हो। आज की गांधी चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अनुमति दें। नमस्कार।

मानव से महात्मा, इस विषय पर आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आनंद लीजिए यादों के झरोके से कार्यक्रम का।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि अपने व्यक्तित्व से एक युग की पहचान बन गए। ऐसे ही कलाकार थे मनोज कुमार। देशभक्ति पर आधारित उनकी फिल्मों ने उन्हें भारत कुमार की पहचान दी, तो वहीं रोमांटिक फिल्मों में उनकी सादगी, गंभीर अभिनय और भावपूर्ण मुस्कान ने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई। आज उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर आइए उनके फिल्मी सफर को याद करते हैं उनके कुछ सदाबहार गीतों के साथ। हर गीत उनके अभिनय के किसी ना किसी रंग से हमारा परिचय कराता है।

महत्व दिया है। हिमालय की गोद में फिल्म में उनका संवेदनशील और सरल व्यक्तित्व दर्शकों को बेहद पसंद आया। इस फिल्म का ये गीत आज भी प्रेम गीतों की सूची में विशेष स्थान रखता है। इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और मुकेश की दिलकश आवाज़। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को।

आपने सुना हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। श्रोताओं, अगर मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी कालजयी फिल्म उपकार। देशभक्ति, किसान और भारत की मिट्टी के प्रति सम्मान को जिस प्रभावशाली ढंग से उन्होंने इस फिल्म में प्रस्तुत किया, वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। महेंद्र कपूर की ओजस्वी आवाज़ में ये गीत

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: देशभक्ति के साथ साथ मनोज कुमार ने रोमांटिक और भावनात्मक भूमिकाओं में भी अपनी अलग पहचान बनाई। पत्थर के सनम फिल्म में उनका अभिनय प्रेम, पीड़ा और संवेदनाओं का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है। मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ में आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मनोज कुमार ने अपने फिल्मी सफ़र में रहस्य और रोमांच से भरपूर फिल्मों में यादगार अभिनय किया है। गुमनाम ऐसी ही एक फिल्म है जिसमें उनका सशक्त अभिनय दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। इसी फिल्म का ये मधुर गीत मोहम्मद रफ़ी और शारदा राजन की आवाज़ों में आज भी उतना ही लोकप्रिय है, जिसे सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने और अपनी कलम से इसे सजाया है हसरत जयपुरी ने।

इसी के साथ कार्यक्रम यादों के झरोखे से यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

मोहम्मद रफ़ी और शारदा राजन की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे गुमनाम फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, आज के इस संगीतमय सफ़र में हमने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और भारत कुमार के नाम से विख्यात मनोज कुमार के जन्मदिन पर उनकी फिल्मी यात्रा के अनेक रंगों को उनके सदाबहार गीतों के माध्यम से याद किया।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
6: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
6: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
5: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
7: दिल्ली की राउत एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में

0: 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से

0: लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
1: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र

0: सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
2: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। Fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
3: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover Baliga. According to a notification issued by the Delhi High Court, the court will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, along with the connected offences. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Ross Avenue Courts to head the specially designated court. The initiative is aimed at ensuring expeditious adjudication of cases involving the use of unfair means in public examinations. The notification was issued hours after Prime Minister Narendra Modi announced the center's decision to establish fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Rohan for Akashwani News, Delhi.
1: Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. We have a report.
4: सोनम।

0: Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। कार्यक्रम इनसे मिलिए आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: इस पर श्री बिपिन कुमार अहिरवार, अपर आयुक्त इनकम टैक्स रायपुर से ली गई भेंट वार्ता भेंट करता है रमा शंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नौकरी पेशा व्यक्ति हो या बिजनेसमैन हो, सभी के लिए एक बहुत जो महत्वपूर्ण कार्य होता है अपने आय का विवरण हर वर्ष ईमानदारी से जमा करना, और इसे जमा करने की एक मियाद होती है, समय होती है। आयकर विभाग द्वारा वो समय निर्धारित किया जाता है और इसे भरना आवश्यक होता है, क्योंकि जितनी एक साल में हमने हमारी इनकम होती है, जितनी हमारी अर्निंग होती है, उसके जरिए हमें एक कुछ टैक्स या कर पटाना पड़ता है, इसे ही आयकर कहते हैं, और इस आयकर का विवरण देना आवश्यक है। इसी से हमारे देश के विकास का निर्धारण होता है और हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो श्रोताओं, इनकम टैक्स फाइल करना क्यों जरूरी है और इनकम टैक्स फाइल करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विपिन कुमार अहिरवार जी को, एडिशनल कमिश्नर है इनकम टैक्स ऑफिस रायपुर में। तो विपिन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो विपिन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ITR फाइल क्यों करना चाहिए।
1: सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को यह बता देना चाहता हूं कि 24 जुलाई जो कि आयकर दिवस है, और इस उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया है, तो मैं आकाशवाणी रायपुर के लिए भी सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि ITR क्यों फाइल करना जरूरी है, तो एक तरफ ना केवल ये राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान करता है, बल्कि दूसरी तरफ ये कानूनी अनुपालन के लिए भी जरूरी है। जैसे कि अगर आप देखें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के हिसाब से, अगर किसी भी व्यक्ति की साल भर की आय जो है एक निश्चित लिमिट से ऊपर है, तो उसको रिटर्न फाइल करना होगा। ये रिटर्न फाइल करने के बहुत फायदे होते हैं। एक निश्चित लिमिट से अगर आपकी आय ज्यादा होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना होता है। यह लिमिट जैसे अगर आप पुरानी रजीम के हिसाब से देखें तो 2,50,000 की रखी गई थी
0: जी।
1: और अगर नई रजीम के हिसाब से देखें तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स करदाताओं को कई सारी श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि सैलरी पाने वाले लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, HUFs हैं, या कंपनी है या फर्म है, तो सबके लिए रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग ड्यू डेट होती है और सबके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, नियम होते हैं।
0: तो विपिन जी, जो एक निर्धारित सीमा होती है आय की, के ऊपर इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उन व्यक्तियों को क्या जिनकी इनकम जीरो है, क्या उन्हें भी इनकम टैक्स फाइल करना आवश्यक होता है?
1: कानूनी रूप से तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर वो लोग भी आयकर रिटर्न फाइल करें तो उनको भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे कि अगर उनका कहीं पे TDS कट गया है, तो अगर उन्हें वो अमाउंट भी रिफंड के रूप में पाना है तो उसके लिए उन्हें रिटर्न फाइल करना ही होगा। दूसरा, अगर कभी वो किसी भी सरकारी टेंडर में अप्लाई करते हैं तो वहां भी रिटर्न के लिए मांगा जाता है कि आपने पिछले 3 वर्षों में आयकर विवरणी या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर उन्हें बैंक से लोन लेना हो, वीजा के लिए अप्लाई करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, तो भी वहां पे देखा जाता है कि आपने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं। ये बेसिकली आपके पिछले सालों में कमाई गई आय का पूरा विवरण देता है, इसलिए कोई भी रिटर्न को फाइल कर सकता है।
0: तो ITR फाइल करने के क्या फायदे हैं?
1: एक तरफ तो ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी जो होती है, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में योगदान होता है। दूसरी तरफ अगर आप रिटर्न विद इन ड्यू डेट जो होती है वो फाइल करते हैं, तो आप रिफंड भी

0: आपको मिल जाता है। लोन, वीजा, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय भी इसके बारे में पूछा जाता है आपसे। और लॉस अगर आपको होता है, मान लीजिए आपको हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है और अगर लॉस हो जाता है उसमें, या कैपिटल गेन है, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची या शेयर्स का कुछ आदान प्रदान हुआ है, उससे भी कुछ लॉस आ रहा है, तो आप उसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया हो, उसको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
1: तो बिपिन जी, अभी हम अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष का इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? अगर कि लास्ट डेट पर रिटर्न फाइल ना कर पाए तो वो क्या कर सकते हैं?
0: अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 निकल गया है, और उसके करेस्पॉन्डिंग संबंधित जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, जिसको निर्धारण वर्ष भी कहते हैं, वो 26-27। तो निर्धारण वर्ष 26-27 के लिए रिटर्न फाइल करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है। लेकिन ये जो अंतिम तिथि है, ये सैलरीड लोगों के लिए है, इंडिविजुअल लोगों के लिए है, जिनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करानी है। आयकर की धारा 44 के हिसाब से अगर आपकी इनकम, जो बिजनेसमैन है उनकी 1 करोड़ से ज्यादा, या जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी 75 लाख से ज्यादा होती है, तो उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी होती है। तो उन लोगों की डेट बाद में होगी, लेकिन जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, पेंशनर्स हैं, या जिनकी बहुत ज्यादा हेड्स में इनकम नहीं है, केवल अदर सोर्स में है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल 1.25 लाख तक है, 1,25,000 तक है, तो वो भी आईटीआर 1 फाइल करते हैं, जिसको सहज आईटीआर बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल और सरल होता है। तो इसके लिए 31 जुलाई की डेट है। और जो दूसरी क्वेरी आपने इसमें पूछी थी कि अगर ये फाइल नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए बाद में एक बिलेटेड रिटर्न की भी व्यवस्था करी गई है। आयकर की अधिनियम की धारा 139(4) के हिसाब से आप 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के साथ समस्या यही है कि बाद में आपको रिफंड भी बाद में मिलेगा समय से, और आप अपने लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।
1: जी, तो विपिन जी, कार्यक्रम में हम छोटा सा विराम लेंगे और आपकी पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे।
0: वैसे मुझे एक सॉन्ग है जो बहुत मेरे दिल के नजदीक है, प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विपिन जी की पसंद का ये गीत।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आयकर रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है, कैसे करें, इसके बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विपिन कुमार अहिरवार जी को। तो विपिन जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे कि जो लास्ट डेट पर जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और इसमें अगर कुछ लास्ट डेट के बाद फाइल कर सकते हैं तो उनकी क्या दिक्कतें हो सकती हैं?
1: बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अगर कोई जेन्युइन रीजंस की वजह से रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं कर पाता है तो उसके लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि धारा 139(4) के हिसाब से आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2026 तक
0: जी।
1: लेकिन उसमें कुछ फीस लग जाती है धारा 234(f) के हिसाब से
0: जी,
1: जो कि अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो ₹1,000 उस पर लेट फीस लगती है
0: जी,
1: तो आप फाइल कर सकते हैं
0: जी जी जी जी।
1: लेकिन अगर वो लोग जिनको रिटर्न फाइल करना था और उन्होंने रिटर्न फाइल किया ही नहीं तो उस वजह से उनको पेनाल्टी तो ये लगेगी ही जो मैंने बताई 234(f) के हिसाब से। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है और नोटिस आने के बाद उनका केस स्क्रूटनी में लिया जा सकता है जहां पर डिटेल्स में उनका वेरिफिकेशन होगा। और अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आयकर अधिनियम की धारा 276(c)(c) के हिसाब से उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है जिसमें कि जेल का भी प्रावधान है।
0: जब हम आयकर की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ कई तरह के हमको ऑप्शन दिखते हैं, ITR 1, 2, 3, तो इनका क्या अर्थ होता है और इसमें किस किस तरह को इसे क्लासिफाइड किया गया है?
1: इस निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फॉर्म 1 से लेके ITR फॉर्म 6 तक हमारे विभाग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ITR 1 जो मैंने बोला था इसको सहज भी कहते हैं क्योंकि सबसे इजी होता है, और ये जैसे किसी की सैलरी है या पेंशन है 50 लाख रुपए तक है और उसकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए तक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी के बेचने पे या शेयर्स के बेचने पे जो आता है वो 25 लाख रुपए तक है, तो वो LTCG और हाउस प्रॉपर्टी से भी अगर उसको इनकम केवल 2 प्रॉपर्टी तक है तो वो ITR 1 फाइल कर लेता है। और इसके अलावा अगर ये अमाउंट 50 लाख से उसकी सैलरी ज्यादा है, 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा उसको रेंट आता है या कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो फिर उसको ITR 2 फाइल करना होता है। इसी तरह से ITR 3 जो होता है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लोगों के लिए होता है। ITR 4 में अगर आप देखें तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44AD, 44AE, 44ADA के लिए होती है। फॉर्म 5 जो है वो साझेदारी फर्म जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनके लिए हो गया है, और फॉर्म 6 जो है वो कंपनीज के लिए होता है। इस तरह से सारे अलग तरह के करदाताओं के लिए अलग अलग फॉर्म की व्यवस्था की गई है
0: जी जी जी। तो विपिन जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ITR 1 से लेकर 6 तक इसमें होते हैं अलग अलग, तो किसी व्यक्ति ने भूलवश ITR 1 फाइल करना था, उसने ITR 1 की जगह 2 या 3 फाइल कर दिया, तो इस दृष्टि में क्या किया जा सकता है?
1: ये बहुत अच्छा आपने पूछा, क्योंकि इस तरह की गलतियां जानबूझ के कोई नहीं करता है, बट चूंकि कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं तो गलतियां हो जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने उनको दोबारा मौका देते हैं और 139(9) धारा के हिसाब से अगर आप रिटर्न गलत भर देते हैं तो उसको डिफेक्टिव रिटर्न माना

0: आ जा सकता है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट एक बार उसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद आपको वापस पोर्टल पे आपके इन्फॉर्मेशन देता है कि आपसे ये गलती हुई है। अगर आप नियत समय के दौरान उसका जवाब दे देते हैं और संबंधित दस्तावेजों को भी प्रस्तुत कर देते हैं ऑनलाइन माध्यम में, तो उसको वैध रिटर्न मान लिया जाता है। लेकिन अगर आप जो समय आपको दिया है, जनरली 15 दिन का समय होता है, अगर आप उस समय तक उसको नहीं जवाब देते हैं, तो फिर वो इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाता है।
1: जी
0: इनवैलिड रिटर्न का मतलब होगा कि जैसे आपने उस

0: का समय होता है, अगर आप उस समय तक उसको नहीं जवाब देते हैं तो फिर वो इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाता है।
1: जी
0: इनवैलिड रिटर्न का मतलब होगा कि जैसे आपने उस साल में रिटर्न फिर फाइल ही ना किया हो।
1: रिफंड यदि ना प्राप्त हो तय समय पर या काफी समय तक, तब उसके लिए उस दृष्टि में क्या किया जा सकता है?
0: वैसे तो अब ऑनलाइन रिटर्न फाइल हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग विभाग कर रहा है, लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो रिफंड जनरली 1 से 2 दिन के अंदर ही रिटर्न फाइल करने के बाद आ जाता है। लेकिन किसी केस में अगर किसी कारणवश रिफंड नहीं भी आता है तो उसको आप विभाग के पोर्टल पर बता सकते हैं और अपने कंसर्न्ड असेसिंग ऑफिसर से, निर्धारण अधिकारी से भी इस रिगार्डिंग मिल सकते हैं। और आप इसके अलावा फिर भी काफ़ी समय हो जाता है और आपका रिफंड नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप ग्रीवांस अपनी समस्या भी फाइल कर सकते हैं विभाग की वेबसाइट पर और उसका बहुत त्वरित निदान होता है।
1: जी जी जी और विपिन जी, जब हम टैक्स फाइल करते हैं उस समय जब हमें डिडक्शन और एग्जेम्पशन दो वहाँ पे दिखाई देते हैं ऑप्शन, तो इनके बीच का फर्क हमें बताएं, क्योंकि इसमें काफ़ी एक दुविधा होती है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। तो डिडक्शन का मतलब अगर देखें हम, शाब्दिक अर्थ कटौती होता है और एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट।
1: जी
0: तो जहां हम अपनी टोटल इनकम, सकल आय जब उसकी गणना करते हैं, क्योंकि हमें सकल आय पर ही टैक्स देना होता है, आयकर देना होता है, तो उस इनकम में अगर हम जिस इनकम के हिसाब से कटौती लेना चाह रहे थे तो उसको हमें पहले टोटल इनकम में शामिल करना होता है, वो उसका हिस्सा होता है, बाद में हम उसको कटौती में से हटाते हैं। लेकिन अगर छूट होती है तो वो स्टार्टिंग से ही छूट होती है, तो उसको हमें टोटल आय में उसको अपना हिस्सा नहीं बनाना पड़ता है और आय जो है वो छूट वाले अमाउंट के बिना ही कैलकुलेट की जाती है। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर भी स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे कि आयकर की धारा 80C के हिसाब से आपने LIC में इन्वेस्टमेंट किया है या आपका हाउस लोन है, तो मान लीजिए कि आपने 1.5 लाख रुपए का 80C में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस 1.5 लाख रुपए को हम पहले टोटल इनकम पूरी आपकी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से माइनस करते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन छूट का अगर देखें हम, जिसको एग्जेम्पशन बोलते हैं, तो सेक्शन 10 आयकर की धारा 10 के हिसाब से बहुत सारे छूट होते हैं, तो जैसे उसमें LTC हो गया या HRA हो गया, तो इसको टोटल इनकम का हम हिस्सा पहले से ही नहीं मानते हैं और इसको हटा के ही आपकी टोटल आय कैलकुलेट करते हैं।
1: जी जी, तो विपिन जी आपने बताया 80C जिसमें जो धाराएं हैं, तो इससे संबंधित और भी 80C 80E, तो इसके बारे में हमें बताएं।
0: ये सारे कटौतियों के सेक्शन हैं जो चैप्टर 6 आयकर अधिनियम का होता है। तो जैसे कि आयकर अधिनियम के हिसाब से आप 1.5 लाख रुपए तक का कटौतियां क्लेम कर सकते हैं, तो उसमें 80C हो गया आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोग बाग अपना हाउसिंग लोन में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका 80D में हम अपने घर के लोगों के लिए फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए ले लेते हैं, तो वो होते हैं। और बट अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये सारे जो डिडक्शन आप पूछ रहे हैं, कटौतियां पूछ रहे हैं, ये अब जो नई रेजीम आई है उसमें डिडक्शंस अलाउबल नहीं है, क्योंकि वहां पर सरकार ने टैक्स स्लैब रेट्स काफी चेंज किए हैं और उसमें टैक्स स्लैब रेट्स में टैक्स बहुत कम रेट पर लग रहा है, इसलिए वहां पर डिडक्शन मतलब कटौतियां और एग्जेम्पशन मतलब छूट बहुत लिमिटेड दिए गए हैं।
1: तो विपिन जी, जब आयकर रिटर्न फाइल करने की बात करते हैं, तो अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि दो रेजिम की बात होती है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, तो ये दोनों क्या है, इसमें टैक्स स्लैब में क्या फर्क है?
0: देखिए, फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद से न्यू टैक्स रेजिम लाई गई और न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स रेट्स को बहुत सुसंगत बनाया गया स्लैब रेट्स को, तो 20 लाख रुपए तक की इनकम पे 20% टैक्स ही आपको देना होगा, उसके बाद 30%। जबकि अगर पुरानी टैक्स रेजिम को देखें तो उसमें डिडक्शन और छूट कटौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें टैक्स रेट्स थोड़ा सा ज्यादा रेट पर होते हैं और उसमें 2.5 लाख रुपए तक की छूट होती है पुरानी रेजिम में, जबकि नई रेजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी टैक्स फ्री होती है।
1: तो विपिन जी, जब कोई व्यक्ति ITR फाइल करता है तो मुख्य रूप से क्या क्या जो प्रमुख सावधानियां हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए?
0: ये बहुत रेलिवेंट आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी हो ही जाती हैं ITR फाइल करते समय। तो सबसे पहले तो अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आप जो भी संबंधित दस्तावेज हैं सारे अपने पास रख लें
1: जी,
0: और पूरा

0: से आप देख लें कि पिछले उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसका आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सारी की सारी इनकम का डिटेल्स आपके पास हो। जैसे कि आप अपने सारे बैंक स्टेटमेंट्स देख लें, 26 AS ट्रेसेस से डाउनलोड कर लें, वो भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इजीली मिल जाता है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपको पेमेंट हुए और कहाँ कहाँ से आपका TDS उस पर कटा है। इसी तरह से अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप अपना फॉर्म 16A ठीक से देख लें। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके आप AIS और TIS मॉड्यूल भी होता है, मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी। तो और कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपने किए हैं, उसी तरीके से आप अपना मैसेज देखते रहें, ईमेल को चेक करते रहें, जिससे कि आपको पता चले कि और कौन से डिडक्शन एग्जेम्पशन जो आपको मिलने थे या नहीं मिलने थे आपने ले लिए हैं, और कौन से ट्रांजेक्शन हैं, वो भी उनका आपको पूरा पता होना चाहिए। और आपको अपनी कृषि आय गलत नहीं दिखानी है, कृषि आय उतनी ही दिखानी है जितनी आपको आय हो रही है। अभी हाल ही में CBDT ने ये भी किया है कि अगर आपने भारत के बाहर कोई इनकम कमाई है या कोई असेट्स में वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग भी डिस्क्लोजर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है, वो भी आपको पहले बता दिया जाएगा। तो उसको आपको कहीं कुछ छिपाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको आप अपने आयकर विवरणी का पार्ट जरूर बनाएं। अगर समय से आप उसको डिस्क्लोज कर देते हैं तो ये आपके हित में ही होता है। जो सावधानियां मैंने बताई हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, उसमें हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जिस अकाउंट में हम अपना रिफंड चाह रहे हों बैंक अकाउंट में, उसको हम प्री वैलिडेट जरूर कर लें, और इसके साथ साथ रिटर्न को सबमिट करने के बाद हमें उसको वेरीफाई जरूर करना है। वो पोर्टल से ही ई वेरिफिकेशन के माध्यम से वेरीफाई करना जरूरी है।
1: तो विपिन जी, यदि कोई टैक्स पेयर्स इन सब बातों को जानना चाहे और हो सकता है कि किसी के मन में कन्फ्यूजन हो, तो उसमें आयकर विभाग क्या मदद कर सकती है?
0: देखिए, आयकर विभाग शुरू से ही इस दिशा में मदद करने के लिए उन्होंने अपने विभाग में जहां भी कार्यालय हैं, आस्क, आयकर सेवा केंद्र आस्क, जहां पे करदाता जा सकते हैं और अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि 24/7 इसके लिए कुछ फोन नंबर्स भी दिए गए हैं, उन पे भी वो अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका अब बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है, उसको लेके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एक कर साथी चैटबॉट भी बनाया गया है। वहां पर आप हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों भाषा में, या बोल के भी अपनी कोई भी क्वेरी दे सकते हैं, और वहां से आपको जवाब, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हो, चाहे जो अभी आप पूछ रहे थे रिफंड से रिलेटेड हो, या और कोई भी नोटिस आपके पास आ गया तो कैसे कंप्लाइंस करना है, वो सारी जानकारी आपको एक क्लिक पर मिल जाएंगी।
1: जी, तो विपिन जी, जब आयकर की बात हो रही है, तो आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है किसी कारणवश, तो कब आ सकता है और ये नोटिस आने पर क्या करना चाहिए?
0: जो अभी मैंने जैसे आपको बताई थी कि जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ITR फाइल करते समय, अगर कतिपय किसी कारणों से हम वो सावधानियां नहीं बरत पाते हैं और गलतियां हो जाती हैं तो नोटिस भी आ जाते हैं। लेकिन करदाताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आयकर विभाग से कोई नोटिस आ गया है तो इसका मतलब वो बिल्कुल ये ना समझें कि कोई कर से संबंधित उनकी चोरी पकड़ी गई है या उनके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई चीज़ें उनको सिर्फ सूचना देने के लिए की जाती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये ऐसा है और अगर कुछ इसमें ठीक करना है तो आपको वो बता दिया जाता है। उसी तरीके से कई बार अगर आप बिजनेसमैन हैं तो किसी दूसरी पार्टी के साथ अगर आपने ट्रांजैक्शन किए हैं तो उस पार्टी से किए गए ट्रांजैक्शन भी आपसे नोटिस से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को नोटिस मिले तो उसको नोटिस का सेक्शन देख लेना चाहिए, और उससे भी जरूरी चीज़ है कि ये देख लेना चाहिए कि उस नोटिस का जवाब हमें नियत समय, जो कि उसमें लिखा होगा, तब तक जरूर देना है।
1: आयकर फाइल करते समय पेंडिंग एक्शन हो जाते हैं, तो इसे हम कहाँ जाकर देख सकते हैं, और यदि वो पेंडिंग है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है?
0: देखिए, जैसे अगर किसी करदाता ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल किया है किसी साल का, तो वो हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे उसने निश्चित ही अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। उस अकाउंट के अंदर जब आप जाते हैं, और उससे आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होता है, तो जब उस अकाउंट के अंदर आप जाते हैं तो उसमें दिखाई देता रहता है कि कौन कौन से नोटिस आपको आए हैं, किसका रिप्लाई कब तक करना है। तो वो वही पेंडिंग एक्शन है कि इस ये नोटिस अभी आपको अचानक से आया है और इसमें इस तारीख तक रिप्लाई करना है,
1: जी
0: तो वो पेंडिंग एक्शन में रहता है, जिसका उस
1: जी
0: समय तक करदाता को अनुपालन कर लेना चाहिए।
1: जी जी तो विपिन

0: यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आयकर विभाग द्वारा कोई ऐसे जन जागरूकता के लिए कुछ कैंपेन किए जा रहे हों तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: एक तो यहाँ के करदाताओं के लिए यही किया गया है कि अभी ड्यू डेट जो ITR फाइल करने की है उसके अंदर अपना रिटर्न फाइल कर दें। दूसरा, उनको ये भी बताया जा रहा है कि जैसे 1961 का आयकर अधिनियम था, उसको अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2026 से आयकर का अधिनियम 2025 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो आयकर अधिनियम 2025 जो आया वो पुराने आयकर अधिनियम 1961 को सरल और सुसंगत बनाने के लिए किया गया। टैक्स रेट्स में हालांकि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, बट सिंप्लीफिकेशन, इसका सरलीकरण करना मुख्य उद्देश्य था। और एक दूसरी और कैंपेन जो चलाई जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है जान लेना, क्योंकि कभी कभी आयकर विवरणी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय करदाताओं को कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं कि आप कुछ गलत कटौतियां या कुछ गलत छूट क्लेम कर लीजिए, इससे आपको रिफंड मिलेगा। तो ऐसा किसी भी भ्रामक और गलत स्थिति में आप ना फंसे, आप खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं पोर्टल पर जाकर। अगर ITR 1 है तो वो तो सहज है, बहुत सरल है, और अगर आपके कोई फिर भी कटौती और छूट हैं तो आप संबंधित दस्तावेज खुद अपने चेक कर लें और उनको देख लें कि आपने जिससे भी रिटर्न भरवाया है, आपने भरा है, वो ठीक तरीके से भरा हो और उन्हीं को वो क्लेम करें। तो इस रिगार्डिंग एक नज कैंपेन चलाई गई थी, NUDGE, इसका मतलब होता है नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल टैक्स पेयर्स। नॉन इंट्रूसिव है, उसमें कोई एक्शन अचानक से नहीं लिया जा रहा है टैक्स पेयर के खिलाफ, बल्कि अगर कुछ ऐसा पता चलता है कि उसने कोई गलत क्लेम कर लिया है गलती से, या फिर कुछ मिसमैच हो रहा है इनकम का, उसने ITR में कुछ कम दिखाई है जबकि हमारे पास जो पेपर्स हैं उसमें कुछ ज्यादा है, तो हम पहले उनको ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन देते हैं। जो आपने बोला था पेंडिंग एक्शंस में, वहां पे भी आ सकता है। तो टैक्स पेयर को पहले गाइड करेंगे, इनेबल करेंगे कि भाई आपका ये इसमें गलत इंफॉर्मेशन है, इसको आप ठीक कर लीजिए। अगर उसके द्वारा तब भी ठीक नहीं होती है तो फिर नोटिस जाता है।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो विपिन जी, कार्यक्रम में चलें उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि आयकर विवरण हर साल दाखिल करना कितना आवश्यक है?
1: आयकर विवरण दाखिल करना बहुत जरूरी है। ना केवल आपको इससे एक संतुष्टि मिलती है कि राष्ट्र निर्माण में हमारा भी योगदान हो रहा है, बल्कि दूसरी तरफ से आप कानूनी अनुपालना भी करते हैं, जिससे कि आप फिर कभी भी किसी भी समय ऐसा नहीं लगेगा कि हमको ये नोटिस मिल सकता है। इसलिए आयकर रिटर्न फाइल करते समय जो भी सावधानियां का हमने जिक्र किया था उनको पालन करते हुए आप नियत समय से अपना रिटर्न फाइल करते रहें। और रिटर्न फाइल करने से ना केवल आपको जो फायदे मैंने बताए वो हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो लोन की हो या फिर वीजा का हो, और अपना रिफंड क्लेम करना हो या लॉस कैरी फॉरवर्ड करना हो, वो भी आपको उसका फायदा होता है। एक बात और मैं ये कह देना चाहता हूँ, फिर से अपने करदाताओं को याद दिलाना चाहता हूँ कि आयकर अधिनियम 2025 के बारे में, कि हालांकि ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, लेकिन इस असेसमेंट ईयर जिसका अभी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये इनकम चूंकि वित्त वर्ष 2025-26, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच इनकम कमाई गई है, वो पुराने वाले इनकम टैक्स मतलब आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा ही गवर्न होगी। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 में आपने जो भी आय, सकल आय कमाई है, उसका रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जो इंडिविजुअल हैं और जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और जिनके बुक्स खाते ऑडिट नहीं होने हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, तो वो लोग 31 जुलाई तक अवश्य अपना आयकर विवरणी दाखिल कर दें। और इसको ऑनलाइन माध्यम में पोर्टल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है उससे आप बहुत सहज तरीके से फाइल कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे विपिन कुमार अहिरवार जी से, जो एडिशनल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स रायपुर में। विपिन जी, कार्यक्रम में आज आप आए और आपने हमारे श्रोताओं को ITR रिटर्न फाइल करना क्यों आवश्यक है, कैसे फाइल करें और इसके फाइल करने के क्या तरीके हैं, इसके बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका और हमारे प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और आयकर दिवस की एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूँ।
0: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम इनसे मिलिए अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: फिल्म से उस्ताद शफाकत अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में मुजफ्फर अली और उस्ताद शफाकत अली खान की तर्ज थी। इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ा सा इंतजार।

सनम प्रिय, इस फिल्म का गीत आपने सुना अनिरुद्ध भोला और अरिजीत सिंह के सुरों में। मिथुन की रचना थी और तर्ज भी थी मिथुन की।

इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं चित्रलोक कार्यक्रम। आज फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। श्रोताओं, उनका असल नाम अरुण कुमार चट्टोपाध्याय था। उत्तम कुमार का जन्म कलकत्ता में हुआ। फिल्मों में आने से पहले वो पोर्ट ट्रस्ट के काम को किया करते थे और 1948 में आई फिल्म दृष्टिदान में सपोर्टिंग रोल से उन्होंने डेब्यू किया। फिल्म बासु परिवार उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाती है और अभिनेत्री सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनके साथ उन्होंने कई एक फिल्में की और उनके करियर में कह सकते हैं कि फिर एक नया मोड़ आया। सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनकी जोड़ी उत्तम कुमार के साथ बेहद सफल और लोकप्रिय जोड़ी बांग्ला सिनेमा में मानी जाती है। सत्यजीत रे की फिल्म चिड़ियाखाना में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उत्तम कुमार को मिला। वो एक सफल निर्माता, निर्देशक और पार्श्व गायक भी थे। 50 से 70 यानी कि 2 दशकों से ज्यादा एक सफल अभिनेता के तौर पर स्थापित रहे। उनकी हिंदी फिल्म अमानुष खूब पसंद की गई। कुछ एक और हिंदी फिल्मों में भी उत्तम कुमार नजर आए थे और भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा 24 जुलाई सन 1980 को इस दुनिया फानी से वो विदा हुए। उनकी कुछ एक अगर फिल्मों की बात करें तो सागरिका, एक टी रात, हारा नो सूर, पाथे, हेलो देर, इंद्राणी, माया मृग, सप्त दी, बिपाशा, भ्रांति विलास, दयानिया, कोकोने मेघ, ये सारी उनकी कुछ अलग अलग फिल्में थीं।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को आप सुन रहे थे फिल्म वजीर में। विधु विनोद चोपड़ा का लिखा यह गीत था, शांतनु मोहित्रा की तर्ज थी। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। एक छोटे से अंतराल के बाद हाजिर होते हैं।

प्रीतम का सर्वद किया ये गीत आपने सुना, इरशाद कामिल के बोलते हैं, उस्ताद राशिद खान की आवाज थी, फिल्म थी जब वी मेट। तुम्हारी सुलू इस फिल्म का गीत है, गुरु रंधावा की आवाज। गीत और संगीत भी गुरु रंधावा के।

तुम्हारी सुलु इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं संपन्न होता है दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: हाँ हाँ।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

0: बताएं।
1: मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

था। सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

0: साथ सुनाता हूँ।
1: सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीनत अमान।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत और कड़ी सजा से संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। और छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य शासन और IIT मद्रास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करनी थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि विभागों ने निरंतर कार्य किया है और कल देर रात इसका मसौदा प्रस्तुत किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मसौदे में फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथियों के सुझाव को शामिल करने के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। श्री वांगचुक पिछले महीने की 28 तारीख से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से सोनम वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य शासन और आईआईटी मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत डेटा आधारित हाइपर लोकल सड़क सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पहले चरण में सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से सबसे संवेदनशील 10 जिलों में ये कार्यक्रम लागू होगा। दुर्घटना संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कर ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की जाएगी। संजय प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानों पर समयबद्ध और कम लागत वाले सड़क सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। सक्ती जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिला अस्पताल सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार पटेल को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने ही अधीनस्थ का पे डेटा भेजने के बदले रिश्वत मांगी थी। वहीं एसीबी की टीम ने बस्तर जिले के कोड़ेनार थाने में पदस्थ महिला आरक्षक तिलेश्वरी साहू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को वेबसाइट पर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत और कड़ी सजा से संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। और छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य शासन और आईआईटी मद्रास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। मोर ध्वज राजा का किस्सा हम सुनवा रहे हैं ईश्वरगिरी गोस्वामी गुलाबगिरी और साथियों के स्वरों में।

0: अभी आपने सुना मोरध्वज राजा का किस्सा ईश्वरगिरी गोस्वामी गुलाबगिरी और साथियों के स्वरों में।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020

0: 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: आइए सुनते हैं कमलेंद्र मरावी, सुखराम सिदार, त्रिभुवन सिंह, प्रीतम मरावी और साथियों की आवाजों में रास भजन।

गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राज भजन। कमलेंद्र मरावी, सुखराम सिदार, त्रिभुवन सिंह और प्रीतम मरावी की आवाज़ों में FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद।

आकाशवाणी के इस बेहद लोकप्रिय फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद में मैं हूं आपकी साथी और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, संगीत एक ऐसा जादू है जो दूरियों को मिटाकर दिलों को जोड़ देता है। किसी के लिए कोई गीत बचपन की मीठी याद बन जाता है तो किसी के लिए जीवन के खूबसूरत पलों का साथी। यही कारण है कि जब आप अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पसंद के गीत हमारे पास भेजते हैं तो उनमें केवल एक फरमाइश नहीं होती बल्कि जुड़ी होती है आपकी भावनाएं, आपकी यादें और अपने प्रियजनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं स्नेहिल पत्रों और प्यार भरी फरमाइशों को लेकर हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हैं। आज के संगीतमय सफर में आप सुनेंगे सदाबहार और मधुर फिल्मी गीत जिनकी फरमाइश हमारे श्रोताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों से भेजी है। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत से। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे अनेक श्रोतागण। लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरभ रावत और नीरज रावत। पेंशनवाड़ा रायपुर से हमारे साथी हैं रोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश यादव, शीला, गुनगुन, कनक और अदिति। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। शांतिनगर भाटापारा से हमें फरमाइश भेजी है रमजान खान सिकंदर, असरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फैज खान, सादिया खान, हजरुन निशा, बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो ने। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु डोली और पूर्वेश साहू। भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सिया राम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ। बंगला मटिया बालौत से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। भर्री टोला डोंडी बालौत से नमित कुमार गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू, मुरली गौतम। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अवान अब्बासी। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ से विनोद खड़ से। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। बोरसरा नैला से हमें फरमाइश भेजी है इस गीत के लिए प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू ने। बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। और पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। ये गीत है फिल्म पाकीज़ा से, कैफी आज़मी के बोल हैं, गुलाम मोहम्मद का मधुर संगीत है और लता मंगेशकर की सुरमई आवाज़ है।

कार्यक्रम में आपने सुना पाकिज़ा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। अब हम पेश कर रहे हैं समीर की रचना को नदीम श्रवण की धुन पर। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है बरसात। इस गीत के फरमाइशकर्ता हैं बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झामेन्द्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारिणी सूरज, सुजला ज्योति, रियांश ठाकुर। ग्राम रोहासी से डगीसर राम साहू, नूतन गौरव, घनश्याम साहू। शहीद टेकराम चौक हथबन करेली से संजय कुमार ध्रुव, संजू कुमार ध्रुव। नैला बोरसरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी, मीनाक्षी उमाबाई, अंजुलता ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारेलाल मिश्रा। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार और समस्त माखीजा परिवार। पूरी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी बबली, सुमन, मंटू, मिष्टी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा, अंशु साहू। डोंगरगांव से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, महिला सभा हेतु ये सूचना सुनिए। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 तक के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकती हैं उनके नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आप हमें फ़ोन कर सकती हैं इस नंबर पर 07752266592। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। आइए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, यातायात संबंधी दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट आप बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज

0: भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा एवं भगवान बलभद्र जी की बौना यात्रा निकाली जा रही है। श्री श्री जगन्नाथ सेवा समिति रेलवे क्षेत्र बिलासपुर के तत्वावधान में यह विशाल आयोजन होने जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बहुड़ा यात्रा आज दोपहर 2 बजे मौसीमा मंदिर अर्थात ओडिया समाज के जन्माष्टमी मंडप से प्रारंभ होगी, जो माँ काली मंदिर, थाना तोरवा, रेलवे जीएम कार्यालय, आरटीएस कॉलोनी, जगमल चौक, गांधी चौक, शिवटाकी चौक, तारबहार चौक, गिरजा चौक, रेलवे स्टेशन, तितली चौक होते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। इस बहुना यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर रथ की डोर खींचते हैं। अत्यधिक जनसमुदाय होने से धक्का मुक्की कारण लोगों के गिरने की आशंका बनी रहती है, इसलिए पूरी सावधानी अपनाएं तथा इस भीड़ से छोटे बच्चों, कमजोर, बीमार अथवा वृद्ध व्यक्तियों को दूर ही रखें। मित्रों, चूंकि रथ यात्रा का प्रस्तावित मार्ग ही रेलवे स्टेशन जाने का भी रास्ता है, इसलिए बहुड़ा यात्रा प्रबंध समिति एवं इस धार्मिक यात्रा में शामिल आम जनों से अनुरोध है, सड़क के एक किनारे चलें ताकि ट्रेन पकड़ने जा रहे लोगों को विलंब ना हो, कोई गाड़ी पकड़ने से ना चूके। इसके अलावा बहुड़ा यात्रा के दौरान रास्ते में कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के आने पर उसे तत्काल साइड देवें। अनेकों स्थानों में यातायात व्यवस्था संभाल रहे पुलिस कर्मचारियों के संकेतों का पूरी तरह पालन भी करें। दोस्तों, शहर में विभिन्न ईंधनों से चलने वाली लगभग 10,000 से अधिक ऑटो संचालित है। सभी ऑटो चालकों में एक रूपता तथा अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने हेतु स्त्री पुरुष चालकों के लिए पृथक पृथक वर्दी या वेशभूषा निश्चित की गई है। इस वर्दी के पहनने के बाद ही ऑटो चलाना चाहिए। बिना निर्धारित वर्दी पहने ऑटो चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, अतः हमेशा निश्चित वर्दी पहनकर ही ऑटो चलावें। वर्तमान में ऐसे चालकों पर कार्रवाई की विशेष मुहिम चलाई गई है, अतः सतर्क रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अब बारी है आज के कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश की। फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये मधुर गीत हम लेकर आए हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार जतिन ललित हैं और इस गीत को सुनना चाहा है दतरिंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी और रौनक सेन। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। महमदपुर भगदीन बाजार अकलदरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त। ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद आंचल, चंचल चांदनी, विनय कुमार वर्षा, मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी कोरम, आरती पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। जांजगीर महेंद्रा से राम नारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुम लता, खुशबू कुमारी कश्यप। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य और शुभम जैन। ग्राम दरचूरा से हमें फरमाइश भेजी है ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू ने। हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल स्वर में। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: मीर जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
0: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
0: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
0: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
1: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
0: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
1: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
1: जी।
0: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
1: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
0: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
1: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
0: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
1: जी।
0: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
1: जी।
0: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
1: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
1: जी।
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
1: जी।
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपोध उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोत शब्द का क्या अर्थ है।
0: 8800 4405599

0: है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
4: हैं? वो कैसे?
3: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
4: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।

0: वो कैसे?
1: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
0: भाई वाह!
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
1: ये तो है, अरे चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
1: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
1: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
1: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
0: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
1: चलो
0: संभल कर।
1: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
0: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
1: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
1: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक? आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
3: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली,

0: ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
1: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
0: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
1: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
0: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस पुड़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए जनाब, आप इधर आइए। हाँ ठीक है,
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: अब जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पर हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप

0: आप इधर आइए।
1: हाँ
0: इधर आइए
1: जी।
0: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
1: हाँ?
0: माफ कीजिए, चाय पिएंगे क्या आप?
1: नहीं।
0: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। हाँ? हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
1: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
0: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत।

0: वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। अब हम पुनः रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

संभाले जलते तवे पर, जलते तवे पर झुलस गया पानी।

0: निधा फाजली की रचना थी, चंदन दास की आवाज थी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता गया।

0: अदनान समी बारिश की बूंदों का गाना गा रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग, एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने

0: कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया। एक और आ गया। जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: छाया कंगुली की सोंधी आवाज, जमीर काजमी के बोल।

11:47 हो चुके हैं। विविध भारती से गजलें बज रही हैं और साथ में कुछ मॉडर्न गाने भी। के की आवाज

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत और कड़ी सजा से संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सूरजपुर जिले में ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में करीब 2 दर्जन पुलिस जवान घायल। और भगवान श्री जगन्नाथ की बाहुड़ा रथ यात्रा आज श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक मामले में पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए परीक्षाएं जल्द कराना सरकार की प्राथमिकता थी। उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों और कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला मसौदा तैयार है। इस पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके में भूमि अधिग्रहण और कोयला खदान का सर्वे करने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने पुलिस जवानों पर पथराव किया है, जिससे करीब 2 दर्जन जवान घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों में महिला जवान भी शामिल हैं। ये घटना मदननगर धर्मपुर इलाके में हुई है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात संभालने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले करीब 24 दिनों से हड़ताल कर रहे अतिथि शिक्षकों को 27 जुलाई तक काम पर स्कूल लौटने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने

0: सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हड़ताल के कारण स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसलिए सभी अतिथि शिक्षक 27 जुलाई तक अपनी अपनी शालाओं में वापस लौटकर अध्यापन कार्य शुरू करें। यदि कोई अतिथि शिक्षक तय समय पर काम पर वापस नहीं लौटता है तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी। सक्ती जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिला अस्पताल सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार पटेल को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने ही अधीनस्थ का पे डाटा भेजने के बदले रिश्वत मांगी थी। वहीं एसीबी की टीम ने बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना में पदस्थ महिला आरक्षक तिलेश्वरी साहू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की बाहुड़ा रथ यात्रा आज श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जाएगी। 9 दिवसीय प्रवास के बाद भगवान गुंडीचा मंदिर से अपने मूल धाम श्री जगन्नाथ मंदिर वापस लौटेंगे। बाहुड़ा रथ यात्रा को श्रद्धा समर्पण और लोक मंगल का प्रतीक माना जाता है। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से बाहुड़ा यात्रा निकाली जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। अंबिकापुर और कवर्धा जिले में प्रधान और सत्र न्यायालय में भर्ती की जाएगी। न्यायालय द्वारा निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक और आदेशिका लेखक के विभिन्न रिक्त पदों पर भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और पशु चिकित्सा विभाग ने 20 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों को पदोन्नत कर उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत और कड़ी सजा से संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सूरजपुर जिले में ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में करीब 2 दर्जन पुलिस जवान घायल। और भगवान श्री जगन्नाथ की बाहुड़ा रथ यात्रा आज श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: दंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
1: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी जी,
1: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
1: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ

0: नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: धन्यवाद आप सबको और स्वागत
2: और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
2: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में यादों की

0: जाने।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
0: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

अनीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी। विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

इसके साथ आवाज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम में थे मनोज कुमार की कहानी।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक ही भारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती का फेसबुक पेज ढूंढने

लिए लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, और आप विविध भारती के टेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। आज का जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से है, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? नीला। और तुम्हारा? लाल। तुम्हें समंदर पसंद है या वादियां? समंदर में वादियां। ऐसा होता तो नहीं, सोचो कभी ऐसा हो तो। अच्छा, तुम्हें भोर पसंद है या शाम? दोनों। तुम्हें आसमां पसंद है या जमी? दोनों। अरे घोड़ा चतुर मत करो, किसी एक पर रहो। अच्छा तो मैं एक चुनौती देती हूं, देता हूं, देखते हैं तुम कितनी देर चुप रह सकती हो। ये बात है तो लो, अब मैं तुमसे रूठ गई, जाओ। छोटी सी बातचीत की एक इबारत आज के इस कार्यक्रम का मसौदा, और इसमें वो शब्द शामिल हैं जिन पर केंद्रित होगा आज का कार्यक्रम, यानी उन शब्दों से गाने चुनकर आज हम आपको सुनवाएंगे। छोटी सी क्यूट सी बातचीत, और इस क्यूट सी बातचीत में कुछ बड़े प्यारे से शब्द छिपे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस गाने के साथ, और उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ेंगे जो दिल को छू लेने वाले भी हैं और गुदगुदाने वाले भी। तो आप जिस आवाज की परिकल्पना कर रहे थे उसकी बजाय दूसरी आवाज के साथ नीले रंग का गाना।

सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है। आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुगली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो, तो मजा आएगा इस अंदाजे के खेल में भी। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है, और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रोका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें। चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे। यहां की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको। और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखती है कि नीले से याद आया राजेश खन्ना फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के बैकड्रॉप में दोनों किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया था। और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है, बल्कि कई श्रोता हैं, मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा, देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल पूरी फेहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे। 11 गानों और शब्दों की फेहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी इंद्रधनुष तितलियां, पता नहीं इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, ईजाद इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं, सुरीला सफर में नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे, पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा, और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेम नगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हरे रंग की जहां बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था। प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग सुबह उठकर सबसे पहले

का और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है।

मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है और उनका कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता है काला रंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें लाल रंग पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया था। आपका शुक्रिया जरा नवाजी, हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी, ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं। और अब हम समंदर की तरफ जाने वाले हैं, रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह आप जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है। जैसे भोपाल के लोग बदबदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक बनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं, लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारे श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफ़ी ऊंची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता हैं जिनका कहना यह है कि मैंने मुंबई, थाईलैंड, कन्याकुमारी, दुबई, न्यूजर्सी के अंतिम छोर का समुद्र देखा। एक और श्रोता है, समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि इंसानी भावना और अनंत गहराइयों का एक जीता जागता दर्पण है। इसकी हर लहर में एक कहानी, एक खामोशी, एक गहरा सुकून छिपा होता है। एक और श्रोता का कहना है कि बारिश के दिनों में हम अपने गांव चले जाते हैं जहां घर के आंगन से ही पर्वत और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। एक और श्रोता है जिन्होंने गुहागर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण और महाबलेश्वर में समुद्र का है, गोकर्ण वगैरह का समुद्र देखा। एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे शहर के आसपास जब अच्छी बारिश होती है तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने डैम का पानी लबालब भर जाता है। माँ नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नजारे को देखने के लिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो हो हो, बड़ा लंबा सफर किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती है कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुले, आरे वारे, जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूं तो ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

ये गाना कहता है, वादियों में खो जाएं हम तुम। ये एक बहुत ही प्यारी बात है। और एक श्रोता ने बड़ी गहरी बात लिखी है, कहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ा रंग प्यार और मोहब्बत का रंग होना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज महान नायक उत्तम कुमार ने इस संसार को अलविदा कह दिया था, उनकी याद में एक गीत जरूर सुनवाइएगा। तो भाई, इस कार्यक्रम के बाद जब सदाबहार नगमे कार्यक्रम 2:30 से मैं आपको सुनवाऊंगा, तो उत्तम कुमार जी के गाने जरूर होंगे। और ये यकीन रखिए कि विविध भारती किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मनोज कुमार जी के गाने सुनवाए तो उत्तम कुमार जी के गाने भी आज बाकायदा सुनवाए जाएंगे। कुछ और श्रोताओं की बातें, मेघालय के चेरापूंजी की वादी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा कई श्रोताओं ने लिखा है कि आरती मुखर्जी की आवाज है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म के दूसरे गानों का भी जिक्र किया है, आरंभ नाम की यह फिल्म जिसमें सभी सुख दूर से गुजरे जैसे गाने हैं।

एक और श्रोता कहते हैं कि मैं राजस्थान में हूं, 8 दिनों से बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता है जिन्हें अमरकंटक की वादियां बहुत पसंद हैं और उनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। किसी को जम्मू कश्मीर के पुंछ की हरी भरी वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पसंद की जगह लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने तापी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्हें सिक्किम, मेघालय, दार्जिलिंग और मसूरी की वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक और श्रोता बहुत गहरी बात लिख रही है कि जिंदगी में सब रंग मिल जाएं तो जीवन खुशनुमा हो उठता है, मगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं, ये बचकानी से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो कम सुनाई देता है, लेकिन ये गाना एक बहुत ही प्यारे एहसास को बयां करता है। फिल्म का नाम बताइए।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है। और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं लेकिन आना सागर झील है, और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मिनाल का झरना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हम वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफ़र करने वाले थे लेकिन आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा

एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मजा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए, और जैसे इसी भारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम, और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना। विविध भारती, ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी के बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है, क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ जैसे खिड़की खोलते हैं, एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है, यहाँ नदियां तो हैं, पहाड़ और वादियां दूर दूर तक नहीं हैं। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियां भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का मजा अलग होता है, और गौर से सूर्योदय देखने का मजा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे होने और ये किस, तो वो शाम कहां बिता है ये बताइएगा।

सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाजें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा।

है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता है जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भागदौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद हैं क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज्यादा

0: से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद हैं क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधलका उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
1: आसमां के नीचे।
0: आसमां के नीचे।

0: बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस रे चुप से।

भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए, तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं, वहाँ जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो हो, क्या

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता हैं जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतज़ार है, लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है, और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
2: या

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफर है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: हम विविध भारती से बोल रही हैं, वंदे मातरम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा।

0: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
1: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
2: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

0: इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे

0: मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
1: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेट

0: स्टेट फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश की शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
4: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से

0: ऊपर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज़्क़ को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले तीन दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
1: दक्षिण गुजरात में दो दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले छह घंटों में उत्तर गुजरात के वाव थराद और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमें।

अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंडीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजी। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना हजरत जयपुरी ने लिखा था, संगीत शंकर जयकिशन का था। इंदीवर के बोल श्यामल मित्रा का संगीत फिल्म

0: पंचायत फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यही खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सखियों, खुशियाँ ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर ज़रूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर ज़रा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियाँ हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी ज़रा नज़र घुमाइए, बच्चों की तोतली बोली में कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मनपसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्ही नन्ही सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतज़ार किस बात का है, इन नन्ही खुशियों पर नज़र रखिए। हमें फ़ोन

0: लाइए और आज की बातें इन्हीं नन्ही खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियाँ हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली इस समय बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं क्या करती हैं।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा वीक्षा लिख लेती हूँ।
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी उसकी मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा है तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
1: हाँ होते हैं ना चंचल जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और
1: जी
0: ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
1: लेखन की प्रेरणा हमें मिली कुछ बातें कुछ गीत से। जब वो
0: अच्छा
1: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
0: ये बड़ी अच्छी
1: करके
0: बात
1: हिचक खुलती गई थी।
0: सृष्टि, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
1: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
0: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और कोई शौक आपके?
1: बिल्कुल नहीं, बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं। मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहे।
0: ये बिल्कुल सही बात है।
1: किताबें
0: अगर
1: पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक।
0: अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी जी जी जी जी
0: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो
1: तब तक लिख नहीं सकते आप, तब तक लिख नहीं
0: बिल्कुल सही
1: सकते।
0: बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें
1: जी
0: अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
1: जी जी जी
0: सृष्टि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं।
1: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
0: जी, आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी। दीदी,
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे।
1: जिला सागर है, मध्य प्रदेश, ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ। दीदी
0: भारती कुर्मी क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी, कक्षा 8वीं में।
0: कक्षा 8 में? यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग है तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है। दीदी दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है। तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन,
0: जी
1: 5वीं तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी,
1: जी दीदी
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वही है, उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में। दीदी
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है।
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: जी दीदी
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी

0: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियाँ बांटता है,
1: जी दीदी,
0: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
1: मूवी का नाम है रंग
0: जी,
1: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
0: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
1: जी
0: इसमें क्या मेरी खता है,
1: जी
0: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है ना,
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
0: अच्छा,
1: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का

0: मुसाफिर चली जा रहा है, है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल की, दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
1: बहुत बहुत सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव,
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देती है, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई है। मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती हूँ, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे।
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के
1: सुनना
0: लिए आप
1: आपका,
0: क्या करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करते हैं मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युतिका नागर।
0: युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही?
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना,
0: हाँ
1: जूही
0: जी,
1: का
0: जूही का फूल
1: वो।
0: बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुनके उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में MA BEd करे हुए लोग थे,
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण लिखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा
1: देखिए
0: सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं, और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ भी काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है। वो बहुत अच्छी अदाकारा रही, उनके यहाँ से ये मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं

0: म्यूजिक सुनू, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूँ कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा, रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेते हो, कहीं सीखा है? मैं कहती हूँ उनको कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा ही।
1: अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज़ आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
0: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है
1: तो
0: वो
1: बताइए
0: गाना
1: आपकी पसंद
0: है,
1: कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
0: महल फिल्म का गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने
1: हाँ
0: बारे
1: जी
0: में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका किस
1: हाँ,
0: तरह गुजरता है?
1: घर के काम करते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते हैं।
0: काम हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना। हाँ
0: खाना बनाना ऐसा चीज़ है जो आपको खुशी देता है?
1: जी मैम,
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना ज़रूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमा

0: आयश, आप पे सबसे ज्यादा की जाती है।
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मन फिल्म का मैम।
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम?
1: मेरा मन क्या तुम्हें चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। तो
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैम घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियाँ ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, तो आपको
1: जी
0: अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है।
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। जी
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के। सूजी
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: के बनाते हैं,
0: अच्छा,
1: सूजी को भूनकर। जी
0: सूजी के टुकड़े बनाती हैं।
1: जी मैम। और मैम आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं।
1: जी आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो
1: जी मैम, जी
0: मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं
1: मैम,
0: उनमें कोई भी
1: जी मैम,
0: मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा
1: जी मैम,
0: करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है।
0: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आप गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा। बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले याद आया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती।
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की
1: और
0: किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मेरा।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का, और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं। आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती हूँ। वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको
1: है।
0: प्रेरित करती
1: वो
0: हैं। और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: मैडम सखी सहेली।
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा। और उसके बाद
1: हाँ
0: में और कौन से
1: वैसे
0: कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले उनकी यादों की,
0: अच्छा,
1: सितारे, सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है। इसी
0: आपके परिवार में और कौन कौन
1: में
0: हैं?
1: हम दोनों ही है।
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ हम दोनों
0: तो आज आप,
1: ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ और वो नहीं वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर
1: जिंदगी
0: तो पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी
1: जी
0: बात हो रही है चंचल वर्मा से। तो दो चंचल
1: जी
0: सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी
0: चंचल जी अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम, मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये
1: रुकता जाता
0: अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियाँ जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

ये गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को यह समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी।

तैयारियां हैं? यह सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला

0: देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई?
1: सर, मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी,
0: सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा।
1: मिस सुधा, ये लीजिए,
0: कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया।
1: पर सर, आप भी तो...
0: मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं।
1: नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो...
0: कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा,
1: नहीं नहीं, वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है।
0: सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी

पे ही डाल दी। माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर पापा की तबीयत कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकते थे, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा, क्यों? सर मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा,

आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है। कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार हैं। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता। वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

तो एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा। लीजिए सुनिए।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और घुई में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पकनी, अंजनी, जजावल, खरसोता, परमेश्वरपुर, हरिहरपुर, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, गर्जंडी, सिंघरा, भरदा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, धमनी और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये अस्कला, दोरना, जरहाडी, अरगोती, तिरकेला, तप्ताझरिया, लोटाढोड़ी, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, महेशपुर, मानपुर, जगन्नाथपुर, झिरमिटी, शिवनाथपुर, सरगा, पेटला, ढोढ़ागांव, चोरकी पानी, बैडाण, बरवाली, कंडराजा, रानीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये गड़ाकटा, पंडरीपानी, फरसकानी, चेटबा, मड़ियाझरिया, सोनाजोरी, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 107 है। ये सिंघीछाप, बोजिया, इंचपारा, बायसी, गेरसा, नागदरहा, पोटिया, आमगांव, आमापाली, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के पसरखेत और करतला में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मदनपुर, चचिया, धौराभाठा, पतरापाली, बगधरी डांड, साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा, केंदई और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, कापानवापारा, परला, चोटिया, लमना, कोयलार गडरा, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, पंडरीपानी, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये ताल दादर, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, अचानकपुर, हरदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारनडीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।

0: दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:06 हुए हैं। इस वक्त कार्यक्रम संबंधी एक विशेष सूचना हम आपको दे दें। श्रोताओं, आज शाम 5:10 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्म श्रृंखला के अंतर्गत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सविता पुनिया पर केंद्रित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और महिला सभा कार्यक्रम में फोन करें गीत सुने क्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को किया जाता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई मंगलवार को शाम 5:35 पर किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग होगी 27 जुलाई सोमवार सुबह 11:00 से लेकर 11:30 के बीच। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उन कार्यक्रमों के नाम हैं आया सावन झूमके, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। श्रोताओं, इन फिल्मों के गीतों को सुनने के लिए और अपने दिल की बातों को हमसे साझा करने के लिए आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर है 2665 92। याद रखिए, इस नंबर को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। सूचना यहीं समाप्त हुई।
3: लगता है आज मैं हवा में उड़ रहा हूँ। कुछ ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा।
4: आए, ये क्या टकरा गया यार? अरे चिराग, ये क्या अलाउद्दीन का चिराग है? घिस कर देखता हूँ।
5: क्या हुक्म है मेरे आका?
4: क्या तुम सब कुछ कर सकते हो?
5: हाँ मेरे आका, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
4: तो तुम मुझे इस देश का राजा बना दो।
5: माफ कीजिएगा आका, अभी इसके लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है।
4: अरे तो मैं क्या आज के लिए बोल रहा हूँ, 15 दिनों बाद बना देना।
5: मगर मैं मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता आका।
4: क्या मतलब, किस मुर्दे को जिंदा करना पड़ेगा यार?
5: आपको मेरे आका, नशे के कारण आपने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है आका। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ आका।
6: नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो या नशीली दवाओं का, ये आपका सर्वनाश करता है। नशे से बचिए, समाज को बचाइए।
2: श्रोताओं, शाम के 5:10 होने को हैं। लीजिए, पेश है पीपल्स पद्म श्रृंखला के अंतर्गत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सविता पुनिया पर केंद्रित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम रिले करने वाले हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बस कुछ पलों का इंतजार, उसके बाद हम सीधे जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं। और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है, बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, यहाँ पे देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा
3: जी।
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
3: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास, और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गाँव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहाँ जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे, और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
2: अच्छा
3: जी। फिर मैंने हॉकी

0: ट्रायल दी और वहाँ मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट, तो वहाँ पे मैं सेकंड आई थी. गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक गवर्नमेंट
1: होती है ना.
0: जी डिसिप्लिन्ड, एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया वो माइंड में था, तो काफी रोती थी. हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर.
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी.
1: अच्छा जी, 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया.
0: टू मच, टू. अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूं और घर वापस चली जाऊं. काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना. मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ. तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया. वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने. मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा. बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी. मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ. तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, मंडे को तू वापस जा रही है. मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है को सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ. तो बोले कि नहीं बेटा, अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी. उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी. तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं बोल. तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को दे के आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको.
1: लेकिन आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना?
0: जी, मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी. और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी. और मेरा, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी. काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा. उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया. क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया.
1: और आपने काफी गोल बचाए.
0: जी, तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे, उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है. तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे.
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई अकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना. उस पर आपने एशिया कप खेला. ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गाँव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया. तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा. तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है. कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे. तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो. तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मे भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी. जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है. और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे. तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा.
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा.
1: क्या बात.
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई. एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया. उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी. क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ.
1: बिल्कुल ठीक. और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है. लेकिन कर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था, और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है. मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट

0: अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ, तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था, बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई, अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है, ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की, नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है, और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की, और कोचिज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है, और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है, तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था, और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज है
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गाँव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है, तो इट्स मेक मी स्ट्रेस कि मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्रगुजार

0: करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आपके प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे दोस्त सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भर आया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहां पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी
1: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहाँ। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मम्मा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती?
0: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है।
0: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर की हटकर, तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में, और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें, और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पर उतरेंगी, जो आप गोल बचा जाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।

0: सविता पुनिया। जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही हैं, वही आगे भी लगातार जारी रहे। हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
1: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, अभी हम पीपल्स पद्मा श्रृंखला के अंतर्गत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सविता पुनिया पर केंद्रित कार्यक्रम का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। इस वक्त महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें। साथियों, महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत फोन करें गीत सुने क्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को किया जाता है। इसका प्रसारण 28 जुलाई मंगलवार को शाम 5:35 पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग की जाएगी 27 जुलाई यानी सोमवार सुबह 11:00 से लेकर 11:30 के बीच। और इस कार्यक्रम में इस बार चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुन सकते हैं, उन फिल्मों के नाम नोट कर लें। फिल्मों के नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा, क्रिएचर। हम चर्चा का विषय और फिल्मों के नाम एक बार फिर से आपको बतला दें। इस बार के कार्यक्रम में आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। और जिन फिल्मों के गीत आप सुन सकते हैं, उन फिल्मों के नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। इन पसंदीदा फिल्मों के गीतों को सुनने के लिए और अपने मन की बातों को हमसे साझा करने के लिए आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है मित्रों 2665 92। याद रखिए, इस नंबर को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। सूचना यहीं समाप्त हुई।
4: पापा।
5: हाँ बेटा।
4: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
5: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
4: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
5: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
4: आप जा कहाँ रहे हैं?
5: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
4: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
5: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
4: आप भी लाती हूँ।
5: पता नहीं क्या ला रही है।
4: ये भी रख लीजिए।
5: अरे ट्रांजिस्टर। मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे।
6: घर से दूर भी अपनों के साथ, जब हो रेडियो पास

जी हाँ श्रोताओं, ये है आपकी और हमारी प्यारी आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्स पर शाम के इस वक्त 5:35 होने को हैं। चलिए अब रुक करते हैं युवा साथियों के पसंदीदा कार्य

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा जगत और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत सिंह। श्रोताओं, जरा एक पल के लिए ठहरिए और ये सोचिए कि पूरे दिन आपने कितना कुछ सोचा। सुबह उठते ही घर की जिम्मेदारियों के बारे में सोचा, फिर ऑफिस या पढ़ाई की भाग दौड़ के बारे में सोचा, ट्रैफिक की भी चिंता की और मोबाइल पर लगातार आते संदेश के बारे में भी सोचा। परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं तो उसके बारे में भी सोचा। इन्हीं सब बातों के बीच क्या आपने ये ध्यान रखा कि मैं कैसा हूँ या फिर मेरे आसपास रहने वाले कैसे हैं, जैसे कि माता पिता, आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चे, दोस्त हैं तो दोस्त, सहकर्मी हैं तो सहकर्मी। क्या आपने कभी उनसे पूछा कि वो कैसे हैं या अपने आप से पूछा कि मैं कैसा हूँ? अच्छा, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें दूसरों का ध्यान रखना होता है या दूसरी बहुत सारी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होता है। तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना एक स्वास्थ्य है जिसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है, और वो भी हम कब तक भूल जाते हैं? जब तक कोई शरीर हमें संकेत ना देने लग जाए कि कभी थकान नजर आने लग जाती है, कभी तनाव, कभी मानसिक शांति, इन सब के बारे में हम सोचते ही नहीं। लेकिन सच यह है कि हमें सोचना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर यानी कि स्वयं की देखभाल के बारे में। और आज ही क्यों बात करेंगे? आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ केयर डे। ये दिन ऐसा है जो हमें याद दिलाता है कि खुद का ख्याल कैसे रखा जाए, खुद की जिम्मेदारियों को कैसे कुछ समय के लिए भूला जाए और इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक है, क्या हम अंदर से खुश हैं, क्या हमारी मानसिक शांति है। तो श्रोताओं, हर वर्ष 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ केयर डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना के लिए मनाया जाता है। अब 24 जुलाई की तारीख भी अपने आप में एक संदेश देती है साथियों। क्या संदेश देती है? तो आपने ध्यान दिया होगा कि आज जब हम तारीख लिखेंगे तो हम लिखेंगे 24/7, मतलब कि 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन हमें स्वयं की देखभाल करनी है। इस आदत से जोड़ता है हमारा आज का ये दिन। इसका अर्थ है कि सेल्फ केयर केवल किसी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि सेल्फ केयर का मतलब केवल आराम करना, घूमने जाना या अपनी पसंद की चीजें खरीदना है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक है। सेल्फ केयर का मतलब है समय पर और संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम या योग करना, मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करना, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कराना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन की बात किसी और से साझा करना। यानी ऐसी हर अच्छी आदत जो हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाए, वही सेल्फ केयर है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ केयर डे हमें यही संदेश देता है कि जीवन की भाग दौड़ में स्वयं को कभी ना भूलें। जब हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, तभी हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए बेहतर योगदान दे सकते हैं। आइए आज आप और मैं मिलकर ये संकल्प लें कि व्यस्त जीवन में हर दिन कुछ समय स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए, खुशहाली के लिए अवश्य निकालेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक सोच, यही एक खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों,

आपको आज की बात के विषय का और भी कुछ कुछ हम बताएंगे, साथ ही आपको हमारे आज के क्रम के बारे में भी बताएंगे। पर उससे पहले वक्त हो चला है आज के पहले गाने का, जिसे गाया है दीपाली सहाय ने, लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है AR रहमान ने। ये गाना है मैं वापस आऊंगा फिल्म का। लीजिए सुनिए ये गाना।

0: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, अब बारी है हमारे आज के क्रम कला साहित्य की, जिसमें बात हुई है रावी ठाकुर जी से। तो लीजिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
2: श्रोताओं, आज जब हम एक स्वतंत्र भारत की खुलकर बात करते हैं या कर पाते हैं या अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं और अपने अधिकारों का उपयोग कर पाते हैं, तो शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में यह भूल जाते हैं कि इस आजादी की नींव कितने अनगिनत त्याग, संघर्ष और बलिदानों पर रखी गई। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों का आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रप्रेम की एक ऐसी गाथा थी जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। इस संघर्ष में अनेक महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। किसी ने कलम को हथियार बनाया, किसी ने जन जागरण का मार्ग अपनाया, तो किसी ने अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों के मन में स्वतंत्र भारत की लौ को प्रज्वलित किया। तो आज हम ऐसे ही दो महान व्यक्तियों की बात करने वाले हैं। तो कौन है वो महान दो व्यक्ति? साथियों, वो दो व्यक्ति हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी और अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी। इन्हीं दो महान विभूतियों के व्यक्तित्व, उनके विचारों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है एक विशेष मेहमान। आइए बिना किसी विलंब के बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। रावी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: थैंक यू।
2: आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोता साथियों को दे दीजिए।
3: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, माय नेम इज रावी ठाकुर एंड आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट। I'm currently doing my master's in English literature.
2: तो रावी, सबसे पहले हमारे दोस्तों को ये बताइए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद का स्थान किस प्रकार से विशेष माना जाता है?
3: देखिए, यदि हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि अनेक विचारों, संघर्षों और महान व्यक्तित्वों का संगम था। इन्ही महान विभूतियों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद जी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। लोकमान्य तिलक जी ने उस समय भारतीयों के मन में स्वराज की भावना जगाई जब लोग अंग्रेजी शासन को अजय मानने लगे थे। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया और कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए जागरण का मंत्र बन गया। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने अपने साहस, त्याग और अदम्य देशभक्ति से युवाओं को यह संदेश दिया कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हर बलिदान छोटा है। उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया और अंत तक अपने संकल्प पर अडिग रहे। यदि तिलक ने लोगों के मन में स्वतंत्रता की चेतना जगाई तो चंद्रशेखर आजाद ने उस चेतना को साहस और क्रांतिकारी ऊर्जा प्रदान की। इसीलिए दोनों का योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
2: तो रावी, जैसा कि आपने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, ऐसा नारा उन्होंने दिया था। तो उस समय इस नारे का क्या प्रभाव पड़ा था, ऐसा अगर आप हमारे श्रोता साथियों को कुछ बता पाए?
3: उस समय भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था और अधिकांश भारतीयों के मन में यह धारणा बन चुकी थी कि अंग्रेजों का शासन हमेशा रहेगा। ऐसे समय में लोकमान्य तिलक जी ने जब यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह पूरे देश के लिए आशा और आत्मविश्वास का संदेश बन गया। इस नारे ने लोगों के मन से भय को दूर किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक। पहली बार बड़ी संख्या में आम जनता ने यह महसूस किया कि स्वतंत्रता कोई सपना नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। इस नारे ने युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों और समाज के हर वर्ग को आंदोलन से जोड़ा। यही कारण है कि लोकमान्य तिलक जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन जागरण पुरुष भी कहा जाता है। उनके विचारों ने आगे चलकर महात्मा गांधी सहित अनेक नेताओं को भी प्रेरित किया।
2: तो लोकमान्य तिलक ने शिक्षा, पत्रकारिता और सार्वजनिक उत्सवों के माध्यम से लोगों को कैसे जागरूक किया, इस पर भी थोड़ा आप कुछ हमें बताएं।
3: जी, लोकमान्य तिलक जी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक महान शिक्षक, पत्रकार और समाज सुधारक भी। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक जनता शिक्षित और जागरूक नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया और इसके साथ ही उन्होंने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना और लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। एक और महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे सार्वजनिक

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।

0: आयोजनों को सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया। इन आयोजनों के माध्यम से लोग एकत्रित होते थे, देशभक्ति के विचारों का आदान प्रदान करते थे और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित होते थे। इस प्रकार तिलक जी ने समाज के हर वर्ग तक राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुँचाने का कार्य किया।
1: रावी, अब हमारे युवा साथियों को ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद को युवाओं का प्रेरणा स्रोत क्यों माना जाता था?
0: चंद्रशेखर आजाद केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की जीवंत मिसाल।

0: कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं आएंगे। उनके इस निर्णय को आप किस दृष्टि से देखती हैं?
1: यह संकल्प केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि उनके अटूट आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था। उनका मानना था कि यदि वे जीवित पकड़े गए तो अंग्रेज उनके साथियों और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने साथियों और अपने उद्देश्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, तब उन्होंने अंतिम क्षण तक वीरता से मुकाबला किया और जब उनके पास अंतिम गोली बची तो उन्होंने उसे स्वयं पर चला दिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका यह निर्णय आज भी त्याग, आत्मसम्मान और अटूट देशभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशभक्त अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता।
0: तो रावी, क्या ये कहना उचित होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता में संवैधानिक संघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन दोनों की समान भूमिका रही है?
1: जी, निश्चित रूप से यह कहना बिल्कुल उचित होगा। भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति, एक संगठन या एक विचारधारा की देन नहीं थी। यह करोड़ों भारतीयों के सामूहिक संघर्ष और विभिन्न प्रयासों का परिणाम। एक ओर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक चेतना के माध्यम से लोगों को संगठित किया, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं में देशभक्ति की नई चेतना पैदा की। दोनों धाराओं ने अलग अलग तरीकों से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। एक ने नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाया तो दूसरी ने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि भारत के लोग अब स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसीलिए यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन को एक विशाल वृक्ष माने तो उसकी सफलता की जड़ें इन सभी विचारधाराओं और संघर्षों में समान रूप से समाहित हैं।
0: जी, आज के युवाओं को लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद के जीवन से कौन कौन सी तीन बड़ी सबसे महत्वपूर्ण सीख ले लेनी चाहिए, या हमें उनको बताना चाहिए कि कौन सी तीन बड़ी जो महत्वपूर्ण सीख है वो ये हो सकती है जो चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक से सीखी जा सकती है, अगर ऐसा कुछ आप हमारे युवा साथियों को बता पाए?
1: जरूर, आज का युवा देश का भविष्य है और ऐसे में लोकमान्य तिलक तथा चंद्रशेखर आजाद जी का जीवन उनके लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक है। पहली सीख है राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी। दोनों महान नेताओं ने अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि माना। दूसरी सीख है साहस और आत्मविश्वास। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिनाइयां व्यक्ति की परीक्षा लेती हैं, लेकिन मजबूत इरादे हर चुनौती को छोटा बना देते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है शिक्षा और जागरूकता का महत्व। लोकमान्य तिलक जी मानते थे कि शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र बनाता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद का अनुशासन, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण आज भी युवाओं के लिए आदर्श है। यदि आज का युवा इन तीन मूल्यों, देशभक्ति, अनुशासन और निरंतर सीखने की भावना को अपने जीवन में अपनाए तो वह न केवल अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
0: तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके?
1: सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता हमें बहुत बड़े संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी गरिमा को बनाए रखें। राष्ट्र निर्माण केवल सीमा पर खड़े सैनिक या शासन प्रशासन ही नहीं करते, बल्कि प्रत्येक जागरूक नागरिक भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। यदि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, कानून का सम्मान करें, समाज में भाईचारा बनाए रखें और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें तो यही सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। लोकमान्य तिलक जी ने हमें स्वाभिमान और जागरूकता का संदेश दिया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी ने साहस, त्याग और देशभक्ति की मिसाल प्रस्तुत। आज आवश्यकता है हम उनके विचारों को केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने जीवन में भी उतारें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि देशभक्ति केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों, अपने चरित्र और अपने उत्तरदायित्व के ईमानदार निर्वहन से सिद्ध होती है। यदि प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले ले तो हमारा भारत और भी मजबूत, समृद्ध और प्रेरणादायक राष्ट्र बन सकता है।
0: रावी, आज आपने बहुत सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण तरीके से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन, उनके संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: It was a great pleasure being here with you, sir. I have shared the best of my limited knowledge with you and our listeners, and thank you so much for having me here.
2: क्रम

0: कला साहित्य में अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद का योगदान विषय पर रावी ठाकुर जी से हुई बातचीत। साथियों, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध हैं। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: साथियों, अब वक्त हो चला है एक और गाने का, जिसे गाया है केके ने, लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत से सजाया है प्रीतम चक्रवर्ती ने। ये गाना है फिल्म जन्नत 2 का।

दोस्तों, स्वयं का ध्यान रखना केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं, बल्कि अपने मन को भी इतना मजबूत बनाना है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर सकें, क्योंकि स्वस्थ मन ही साहस की सबसे बड़ी ताकत होता है। दोस्तों, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ा हो। कभी परीक्षाओं का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी आर्थिक परेशानी, तो कभी स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां, हर किसी के जीवन में मुश्किल समय आता है। इसीलिए जीवन की पहचान हमेशा मुश्किलों से की जाती है, परंतु मुश्किलों को किस तरीके से हमें अपने साथ लेकर चलना है या मुश्किलों का हमें किस तरीके से सामना करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं कि साहस का अर्थ यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि साहस का अर्थ यह होना चाहिए कि डर के बावजूद सही निर्णय लेना और आगे बढ़ते रहना, ये हम कैसे सोच पाए उस समय पर। दोस्तों, इसी पर महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें हमारी छिपी हुई ताकत और क्षमता को पहचानने का अवसर देती है। तो श्रोताओं, जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, हार मानने के बजाय हिम्मत से उसका सामना कीजिए, क्योंकि साहस व दीपक है जो सबसे अंधेरी राह को भी रोशन कर देता है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन की हर चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना करते रहिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिजीत को, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जोहार।

0: हाँ बेटा,
1: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
0: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
0: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
1: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
0: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
1: आप भी लाती हूँ।
0: पता नहीं क्या ला रही है।
1: ये भी रख लीजिए।
0: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे।
2: घर से दूर भी अपनों के साथ जब हो रेडियो पास

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए, पेश है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम को प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। श्रोताओं, आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। संध्या 6:20 और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। संध्या 7:20 का समय होगा ग्राम सभा कार्यक्रम का, जिसमें मेरा

के गोट का विषय होगा फसलों में खरपतवार नियंत्रण। आगे इसी कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम का, जिसमें आज की बातचीत का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता और कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय। इस विषय से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब देंगे पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी, और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे मैंगू भैया। इसके अलावा आपके पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा का समय होगा रात्रि 8:15 पर। श्रोताओं, ये तो थी आज शाम को प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य आकर्षणों की जानकारी। आइए अब हम आपको कल सुबह और शाम के कार्यक्रमों के विषय में बतलाते चलें। कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, और 9:00 का समय होगा बातों बातों में कार्यक्रम का, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 9:15 का समय होगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का, जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम अमराई, जिसमें कल के कलाकार होंगे साखन सिंह, सुख सागर सिंह, खुसरो और उनके साथी। नए तराने के सफर में हम बनेंगे आपके हम सफर कल सुबह 10:30 पर। और इसके अलावा कल शाम के मुख्य आकर्षण होंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा तयशुदा समय ठीक 5:00। 5:05 पर चित्रपट संगीत का आप लेंगे आनंद। शाम 5:35 संध्या 6:20 और कल संध्या 7:00 आप आनंद लेंगे ईमेल करें गीत सुने इस कार्यक्रम का। रात्रि 8:00 का समय होगा इस सप्ताह संसद में इस कार्यक्रम का, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके अलावा कल रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे, और कल संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा राष्ट्रीय आजीविका मिशन ले होवत हे आर्थिक विकास। संध्या 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा पीएम फसल बीमा योजना। इस विषय पर जानकारी देंगे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर के श्री रघुराज सिंह गौतम, और इनसे बातचीत करेंगे नंद कुमार यादव। कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हकीन की पेपर लीक मामला में फास्ट ट्रैक अदालत और कड़ा सजा ले जुड़े विधेयक संसद के इही सत्र में पारित कराए के प्रयास करे जाही। राज्य सरकार हड़ताल करत अतिथि शिक्षक मल्ला 27 जुलाई तक काम में लौटे के निर्देश दे है और सूरजपुर जिला में ग्रामीण डहाले करेगे पथराव में करीबन 2 दर्जन पुलिस जवान घायल। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि पेपर लीक के घटना के बाद पाछू 2.5 महीना में कई ठीन कदम उठाए गए है। दोषी मल्ला गिरफ्तार करके जेल भेजे गए है। काली रतिहा एक ठीन वीडियो संदेश में श्री मोदी हकीन के सरकार के मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना रहीस के विद्यार्थी मन के शैक्षणिक बछर बेकार झंझावे। प्रधानमंत्री हकीन के संबंधित विभाग मल्ला फास्ट ट्रैक अदालत पर प्रस्ताव

0: इख्तियार करे के निर्देश दे गे हे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के कैबिनेट में चर्चा होही। कैबिनेट के सुझाव के बाद ओला आखिरी रूप दे जाही और सोमवार ले जतका जल्दी हो सकही ओ बिल ल सदन में पारित कराए के प्रयास कराए जाही। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ले भेंट करें। श्री नड्डा बताइन कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी के मांग मल्ल ध्यानपूर्वक सुनेगिस। श्री नड्डा बताइन कि काकरोच जनता पार्टी है तीन तीन मुख्य मांग राखिन और परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के लीक हो ऊपर रोक लगाए बर कुछ एक सुधार मन के सुझाव घलो दिन। श्री नड्डा कहिन कि सरकार काली प्रतिनिधिमंडल के संग एक और दौर के चर्चा करही। यही बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका दावा करिन कि सरकार ओकर दू ठीन मांग ऊपर सैद्धांतिक रूप ले सहमति दे दे है। केंद्र सरकार कहे है कि बेहतर पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा गतिविधि पर पोषण अभियान के दुसरैया चरण के तहत 2,00,000 आंगनबाड़ी केंद्र मल्ला सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में उन्नत करे जाही। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दें। राज्यपाल रमेन डेका ले रायपुर में राज्य के निजी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मन भेंट करके छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक 2026 के तहत नवा निजी विश्वविद्यालय के स्थापना ले संबंधित प्रावधान ऊपर विचार विमर्श करें। श्री डेका राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार लेके अपन विचार साझा करें। ए मौका में आने आने निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलपति मौजूद रहें। महिला और बाल विकास विभाग कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR के माध्यम ले राज्य में पोषण बाल विकास और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ला गति दे के पहल शुरू करे है। यही उद्देश्य ले रायपुर में विभाग और अन्य अन्य औद्योगिक संस्थान के प्रतिनिधि मन संग राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। बैठक के अध्यक्षता करत विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार उद्योग मन के आह्वान करत किहिन कि सरकार के योजनाला और ज्यादा प्रभावी बनाए में ओखर भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। विभाग के संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव किहिन कि CSR के सहयोग के माध्यम ले आंगनबाड़ी केंद्र में आधारभूत सुविधा के विकास करे के संग्रह नवाचार आधारित गतिविधि के विस्तार करे जा सकत है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना मन में कमी लाए बर राज्य शासन और IIT मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करेगे है। एक तहत डेटा आधारित हाइपर लोकल सड़क सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करे जाही। पहली चरण में सड़क दुर्घटना के दृष्टि ले सबले संवेदनशील 10 जिला मन में एक कार्यक्रम लागू होही। संजय प्लेटफार्म के माध्यम ले चिन्हित ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित जगह मन में समयबद्ध और कम लागत वाला सड़क सुरक्षा उपाय करे जाही। शक्ति जिला में एंटी करप्शन ब्यूरो के टीम जिला अस्पताल शक्ति के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार पटेल ला 1,00,000 रुपया रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। प्रभारी सिविल सर्जन ऊपर आरोप है कि ओमन अपने अधीनस्थ कर्मचारी के पे डेटा भेजे के बदले रिश्वत मांगे रहीस। उन्हें ACB के टीम बस्तर जिला के कोरेनार थाना में पदस्थ महिला आरक्षक तिलेश्वरी साहूला 10,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो माचे समाचार कोती। राज्य सरकार हड़ताल करत अतिथि शिक्षक मनला 27 जुलाई तक काम में लौटे के निर्देश दे है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ले जारी आदेश में कहे गए है कि हड़ताल के सेती स्कूल मन में लइका मन के पढ़ाई प्रभावित होवत है। एक सेती यदि कोई अतिथि शिक्षक तय बेरा तक काम में नहीं लहूठी तो ओकर सेवा तत्काल प्रभाव ले

0: खत्म कर दी जाही। अभी अभी मिले समाचार मुताबिक सरकार ले मिले आश्वासन के बाद अतिथि शिक्षक मन अपन हड़ताल खत्म कर दे है। सूरजपुर जिला के मदन नगर धर्मपुर इलाका में भूमि अधिग्रहण और कोयला खदान के सर्वे करे पहुंचे पुलिस और प्रशासन के टीम ला ग्रामीण मन के विरोध के सामना करे बर पड़ी से। जानकारी के अनुसार ग्रामीण मन के पथराव में पुलिस के करीबन 24 जवान घायल हो गए हैं। इमा महिला कर्मी घलो शामिल हैं। घायल मनला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। स्थिति में नियंत्रण रखे बर मौका में बड़का संख्या में पुलिस बल तैनात करे गए है। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित खरसिया नवा रायपुर परमलकसा नवा दोहरा लाइन परियोजना ऐसा डिजाइन करे गए है कि एकरले ज्यादा दबाव वाला बिलासपुर रायपुर और दुर्ग स्टेशन ला बाईपास करैया मालगाड़ी और यात्री ट्रेन के सुगम और तेज अवई जवई हो सकी। ये जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम ले दिन। ये रेलमार्ग छत्तीसगढ़ के 8 प्रमुख जिला ले होके गुजरही और एला औद्योगिक और खनिज क्षेत्र ला आपस में जोड़े के उद्देश्य ले तैयार करे गए है। एक कॉरिडोर के मुख्य ध्यान बलौदाबाजार जिला ला रेल नेटवर्क ले जोड़ना है। बता दें कि रेल मंत्रालय 7,854 करोड़ रुपया के अनुमानित लागत ले 278 किलोमीटर लंबा खरसिया नवा रायपुर परमलकसा नवा दोहरा रेल लाइन के निर्माण ला पाछू साल अप्रैल महीना में मंजूरी दे रही। रायपुर के शांतिनगर स्थित पीजी उमाठे उत्कृष्ट शासकीय विद्यालय के चयन ब्रिक्स 2026 स्कूल जियो स्पेशियल परियोजना शोकेस पर हुए है। जिला कलेक्टर डॉ गौरव सिंह एक उपलब्धि पर विद्यार्थी और शिक्षक मन ला बधाई दें। ए अंतर्राष्ट्रीय मंच ले छत्तीसगढ़ ले केवल एक स्कूल ला कोनो परियोजना पर चयनित हुए के मौका मिले है। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में मैं ए बखत बरसात के मौसम में होवैया बीमारी और बचाव ऊपर एम्स रायपुर के डॉक्टर तुषार भरत जगजापे ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 25 जुलाई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। और पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 4 दिन तक प्रदेश में वर्षा के गतिविधि में कमी आए के संभावना जताए है। संग्रह अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकत है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हाल फिलहाल कहूं भी भारी बारिश होए के आसार नहीं है। अब थोरकुन समाचार सारमा। छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष शालिनी राजपूत कोंडागांव स्थित शिल्प नगरी के दौरा करके शिल्पकार मन ले गोट बात करीन और 40 जिन शिल्पी मन ला आधुनिक टूल किट बांटिन। औ जांजगीर चांपा जिला के पनगांव में सांप के डसे ले एक झिन 15 साल के लड़का के मौत हो गए। ऐसने जिला के बाराद्वार में घलो एक ग्रामीण के सांप के डसे ले मौत हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री है किहिन कि पेपर लीक मामला में फास्ट ट्रैक अदालत और कड़ा सजा ले जुड़े विधेयक संसद के इही सत्र में पारित कराए के प्रयास करे जाही। राज्य सरकार ले मिले आश्वासन के बाद अतिथि शिक्षक मन अपन हड़ताल खत्म कर दे है। और सूरजपुर जिला में ग्रामीण डहाले करेगे पथराव में करीबन 2 दर्जन पुलिस जवान घायल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: श्रोताओं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के इस वक्त 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम को सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला नगमा कुमार शानू अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की आवाज में बेवफा फिल्म से। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक आ पहुंची है उनके नाम हैं राजकोट से जूली जगदीश प्राची प्रवीण, गाजीपुर यूपी से सुरेश उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश

भिलाई नगर से अशोक श्याम कंवर, प्रमीला आसमा श्याम कंवर, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज, लोगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, तलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी ललिमा, खुशांत निशांत, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साहिमा नवाज, हसन नवाज, एहत, रिफा नवाज और चाहत, पलारी से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन और लुथरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श आतिका, डोंडी लोहारा से हमारे साथी हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अल कबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, बाग बहरा से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन, दिल्ली शहर से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी ने, सावतपुर से हमारे साथी हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन, बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साइनी और मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी नंदा हनुमान, टीकमगढ़ से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, हेम राज जहां, पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन अपार, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा, कवर्धा से हमारे साथी हैं राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे, इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत बेवफा फिल्म से।

श्रोताओं ईमेल करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं अनुपमा देशपांडे की आवाज में सैलाब फिल्म से। शब्दों के मोती पिरोए हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है बप्पी लाहिड़ी ने। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल, मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप, राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल, उमा गुप्ता, मिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका, डोंगरगढ़ गांव से राष्ट्रपाल गजपई, राधिका, अंशिका, अनिश्का, तन्मय और मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सोंगा से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देवी कारानी, गजेंद्र कुमार, ख्यांश कुमार चंदन, पोड़ी भाटा गलतरा से दिलीप चंदन, छुआराम यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन और प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश, राहुल साहू ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। कुलगांव से हैं पांडू चंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्व और हिमाक्ष, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, भटिंडा पंजाब से परमेन सिंह, मंजीत, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिंपू, एकम, दमन, अभिजोत, तीवरता, डबरीपारा से महेंद्र प्रताप, मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सौद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी और इनके बहुत सारे साथी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेगा मस्कीन, महाराष्ट्र से संतोष, सुनैना, सुकन्या, सविता, इसी गीत की मिली जुली फरमाइश लिख भेजी है सीतामणि विहार से मसरत, शाहनाज, तलहत, फरहत, रिफत, नुजहत, शाजिया, शाहीन और नाजिया नूरी नाज ने, चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से हमारे साथी हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, तेलंगाना से मोहम्मद बुराउद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन,

राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी। पटियाला से मुकेश पत्रा, नीलम बत्रा। जग राव से नीलम पाठक, सुनील, कमल, दीपिका, काव्या, सुचा सिंह पाठक। मुजफ्फरपुर बिहार से एक मेल आया है इसी गीत के लिए, आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज। पंजाब से हरजिंदर, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और एक अंतिम मेल है इसी गीत के लिए, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन का। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है अनुपमा देश पांडे की आवाज़ में सैलाब फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं ईमेल करें, गीत सुने। इस सफर का तीसरा गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जावेद अली और बन जोसना की आवाज में दे दनादन फिल्म से। आशीष पंडित के लिखे बोल हैं, प्रीतम का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं: हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी, उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी, और संबलपुर कांकेर से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी ने। मंडी डब्बवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया, दुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव, नवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। इसी गीत की मिली जुली फरमाइश लिख भेजी है दूल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य मोहिनी, ऋतिक बलवीर सिंह ने। पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रही मुन्ना। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया और इनके साथी। राजकोट से राजेश, स्वाति, ख्याति। बुलडाणा से अमोल, शोभा, दीपाली, श्लोक। जमशेदपुर से अपूर्व, अनुपम, राजेश और राकेश कुमार। पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल। राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, पूजा। और इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग, कुमारी देवी चौधरी, मालती चौधरी। भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस, निर्मला, विशाल। और पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। और यवतमाल से जयराम, दिशांत, अर्पिता। राजकोट से हमारे साथी हैं जूली, प्राची और प्रवीण। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है दे दनादन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अंतिम गीत आपने सुना इस कार्यक्रम का देव दनादन फिल्म से, और इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। संध्या के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर।

0: www.gov.in
1: हर घर सूर्य घर
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। सूरजपुर जिले में ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में करीब 2 दर्जन पुलिस जवान घायल। और भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की बहुड़ा रथ यात्रा आज श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लीक होने पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने उनकी दो मांगों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। श्री वांगचुक पिछले

महीने की 28 तारीख से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य शासन और आईआईटी मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत डेटा आधारित हाइपर लोकल सड़क सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके चरण में पहले चरण में सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से सबसे संवेदनशील 10 जिलों में यह कार्यक्रम लागू होगा। संजय प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिन्हित ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थानों पर समयबद्ध और कम लागत वाले सड़क सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। महिला और बाल विकास विभाग ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के माध्यम से राज्य में पोषण, बाल विकास तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को गति देने की पहल शुरू की है। इसी उद्देश्य से रायपुर में विभाग और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार ने कहा कि सरकार की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में उद्योगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। विभाग के संचालक डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने कहा कि सीएसआर सहयोग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ ही नवाचार आधारित गतिविधियों का विस्तार किया जा सकता है। सूरजपुर जिले के मदन नगर धर्मपुर इलाके में भूमि अधिग्रहण और कोयला खदान का सर्वे करने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के पथराव में पुलिस के करीब 24 जवान घायल हो गए हैं। इनमें महिला कर्मी भी शामिल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सक्ती जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिला अस्पताल सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार पटेल को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रभारी सिविल सर्जन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही अधीनस्थ कर्मचारी का पे डेटा भेजने के बदले रिश्वत मांगी थी। वहीं एसीबी की टीम ने बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना में पदस्थ महिला आरक्षक तिलेश्वरी साहू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित खरसिया नवा पारा नवा रायपुर परमल कसा नई दोहरी रेल लाइन परियोजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इससे अधिक दबाव वाले बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशनों से बाईपास करने वाली मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की सुगम और तेज आवाजाही हो सकेगी। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। यह रेलमार्ग छत्तीसगढ़ के 8 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगी और इसे औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर का मुख्य ध्यान बलौदाबाजार जिले के रेल नेटवर्क से जोड़ना है। गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने 7,854 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 278 किलोमीटर लंबी खरसिया नवा रायपुर परमलकसा नई दोहरी रेल लाइन के निर्माण को बीते वर्ष अप्रैल महीने में मंजूरी दी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेन डेका से रायपुर में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों से भेंट कर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक 2026 के तहत नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रावधानों पर विचार विमर्श किया। श्री डेका ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और कुलपति उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि बेहतर पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा गतिविधियों के लिए पोषण अभियान के दूसरे चरण के तहत 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया जाएगा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। संविलियन सेवा सुरक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले करीब 24 दिनों से हड़ताल कर रहे अतिथि शिक्षकों ने आज अपने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की मुलाकात शिक्षा सचिव से हुई। इस दौरान कुछ मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल का भरोसा दिए जाने पर अतिथि शिक्षक संघ ने फिलहाल अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 5 सितंबर तक का समय दिया है। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और
देवी सुभद्रा की।

0: बहुड़ा रथ यात्रा आज श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। 9 दिवसीय प्रवास के बाद भगवान गुंडीचा मंदिर से अपने मूल धाम श्री जगन्नाथ मंदिर वापस लौटे। बहुड़ा यात्रा को श्रद्धा समर्पण और लोक मंगल का प्रतीक माना जाता है। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से बहुड़ा यात्रा निकाली गई। रायपुर के शांति नगर स्थित पीजी उमाठे उत्कृष्ट शासकीय विद्यालय का चयन ब्रिक्स 2026 स्कूल जियो स्पेशली परियोजना शोकेस के लिए हुआ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने इस उपलब्धि के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से छत्तीसगढ़ से केवल एक ही स्कूल को किसी परियोजना के लिए चयनित होने का मौका मिला है। यह आयोजन 22 जुलाई को तिरुपति स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में हुआ, जिसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष विद्यार्थियों द्वारा तैयार जियो स्पेशियल परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। राज्य में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ट्री एटीएम की अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत बीजापुर में एसपी बंगले के पास जिले का पहला ट्री एटीएम स्थापित किया गया। इसके साथ ही डीएवी स्कूल में सीड बॉल निर्माण प्रशिक्षण और वन महोत्सव का आयोजन भी किया गया। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार बारिश के मौसम में होने वाले बीमारियों और बचाव पर एम्स रायपुर के डॉक्टर तुषार भरत जगजापे से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 25 जुलाई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा एफएम और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कहीं भी भारी बारिश होने के आसार नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। सूरजपुर जिले में ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में करीब 2 दर्जन पुलिस जवान घायल। और भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की बहुड़ा रथ यात्रा आज श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के इस वक्त 7 बजने वाले हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, इस सफर का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में पापा कहते हैं, इस फिल्म से। जावेद अख्तर की लिखी रचना है, राजेश रोशन का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों ने हम तक अपनी फरमाइश लिख भेजी है उनके नाम हैं, महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश, यवतमाल से राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी, भाटापारा से हैं प्रेमलाल, उपेंद्र साहू, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, महाराष्ट्र से सोपान, वसंतराव, निवित्ति, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता आर्श, विनित कृष्टि पटवा, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अडार नांदघाट से हमारे साथी हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश।

दीपेश वर्मा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता, प्रिंस एकांश, पैठन से सुरेश, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकम्मा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, जालौन मध्य प्रदेश से, माफ कीजिएगा, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब, रामटके, यशोधरा, सव्या रामटके, बठेना पाटन से परमेश्वरी साहू, राजबत्ती, काजल, पूर्वी हेजल, राजेश, रेशमा साहू, बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लचनपुर से हमारे साथी हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, राजनांदगांव से इस गीत की मिली जुली फरमाइश लिख भेजी है बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, प्रतीक्षा, समीक्षा, आराध्या साहू ने, और राजस्थान से हैं धर्मेंद्र, कपिल, पूजा, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिका, जीविका दले ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और कुमार शानू के युगल स्वर में, लीजिए सुनिए पापा कहते हैं इस फिल्म से।

श्रोताओं कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में हंगामा फिल्म का गीत। समीर के लिखे बोल हैं, नदीम श्रवण का है संगीत और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। कतिया जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। जालंधर से संदीप, ज्योति, मन्नत, कमल और इनके साथ ही। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग। बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी, मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन वर्मा, पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैखरा, घुरनी, करिश्मा, सुमासाय, कलेश्वर, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दकी, हमीदुन, जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दकी। नैला से प्रमोद कुमार, वीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु। बिलासपुर से छनुलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत, नामदेव, धर्मदास वाधवानी। भाटापारा से दान सिंह रावत, तानू, पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम, सौरभ रावत। ग्वालियर से सुरेश, किरण, लव्या, आरव, खुराना, एस के, पप्पी। महाराष्ट्र से विजय, रतन, ओम कुमार। करजत मुंबई से अहमद फुलवाले, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु, अहमद फुलवाले। दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह। डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली। और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद, शाजिद। और राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। पंजाब से हमारे साथी हैं राज शर्मा, मीना, योगेश निवान, सौरभ, शाइना, मैंडी शर्मा। दूलापुर यूपी से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरात और नरगिस खातून। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी, किरण। हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू भाटिया, मयंक भाटिया। और हरियाणा से ही जसबीर सिंह, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत।

करमजीत कौर, नागपुर से वैशाली शैलेश टुक टुक, प्रिंस एकांश, सुमित वनी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, तिलहारा से प्रकाश, नर्मदा सुजाता, मुंगवाल से भारत राम पटौडी, जयंती हेमंत उमंग और मोक्ष पटौडी, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन, प्रतिभा इशप्रीत, जाफराबाद से सुधाकर, प्रशांत राजे, प्रथमेश, संचित, प्रणाली सर्वत और सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार, मायरा अजीम, नगमा अजीम, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, अकोला से रमेश, वैशाली, धनंजय, दिल्ली से सोनम, सना, अदीबा, मालोट से रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू, दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी, विपुल, जालंधर से नौशर, रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, मक्कार जहां और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं हंगामा फिल्म का गीत अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक के युगल स्वर में। लीजिए सुनिए।

0: for more entertainment.
1: श्रोताओं, ये था इस कार्यक्रम का अंतिम गीत और इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें। साथियों, महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत फोन करें, गीत सुने क्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को किया जाता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 यानी मंगलवार को शाम 5:35 पर किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई सोमवार सुबह 11 बजे से 11:30 मिनट के बीच की जाएगी। इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। जी हाँ, विषय एक बार फिर से नोट कर लीजिए, आपसे बातचीत का विषय होगा सावन के झूले। और आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उन फिल्मों के नाम हैं आया सावन झूमके, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। नाम एक बार फिर से नोट कर लीजिए, फिल्मों के नाम हैं आया सावन झूमके, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आप इन फिल्मों के गीतों को सुनने के लिए और अपने मन की बातों को साझा करने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए, हमारा नंबर है मित्रों 2665 92। इस नंबर को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। तो याद रखिए, 27 जुलाई सोमवार दिन सुबह 11 बजे से 11:30 के बीच हम करेंगे बेसब्री से आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। सूचना यहीं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। संध्या के 7:20 होने को हैं। चलिए अब रुख करते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो संगवारी भाई बहनी मन ल फुलवा बहनी के माया भरे राम राम जय जोहार। हमर किसान भाई बहनी मर बर तो 12 महीना बूता रहते, फिर अभी बरसात के बेरा म बूता हर औ बाढ़ जाते। हमर किसान भाई बहनी मन बिकट मेहनत करते अपन खेत म फसल ल बढ़िया उत्पादन लेहे बर, तभो कहो कहो खर पतवार ह जामित जाते। अब एक हर पतवार हर फसल मन ल बिकट नुकसान पहुंचाते। मुख्य फसल मन ल घाम हवा पानी जम्मो ले अपन कति खींच लेते खर पतवार मन, और उनकर बढ़वार में कमी आ जाते। जुन्ना समय में संगवारी हुआ परंपरागत खेती करें हमर पूर्वज मन बैला और नागर के माध्यम ले, तो खेत में जोताई के समय

0: बइला मन हर खून खून के कचर कचर देवाए, खून कचर देवाए खरपतवार मन ला, तब भीतरी मा तरी कती खरपतवार मन दब जात रही से, अउ ओ मन हर रेंगाए तो गोबर कराए मूत्र कराए, तो ए मन हा सबो खेत बर दवाई के तरह अमृत के तरह काम कराए, काहे कि ओखर मूत्र घलोक अउ गोबर हा बहुत बढ़िया खातू के रूप में काम आवे। खरीफ फसल में तीन प्रकार के खरपतवार ज्यादा देखेल मिलते, घास वर्ग खरपतवार, चौड़ी पत्ता वाला खरपतवार और नरकट खरपतवार। घास वर्ग खरपतवार एक खरपतवार के पाना हर पतला लमरी असन होते, इकर पाना मन धारिया ने लाइन लाइन कस दिखते, ए हर एक बीजी होते, जैसन के सावा कोदो दुबी कंचरी गिनिया घास, यही मन हा खरपतवार। और चौड़ा पान वाला खरपतवार ए पाना हार बड़े बड़े चौड़ा रहते और ज्यादातर दुबीजी पौधे होते, जैसन के साठी कनकौमा कोंदरा कटीली चौलाई बड़े दूधी हजार दाना और गाजर घास। नरकट खरपतवार होते लंबा होते ठोस और कड़ा रहते, तीरे तीर हा ओखर किनारे किनारे हा कड़ा रहते, और जड़ मा गांठ कांदा असन होते, जेन हर जरी मा जम्मो भोजन ला इकट्ठा करके नवा नवा पौधा जामथे। खरपतवार नियंत्रण करेला बताबो संगी हुआ ए संदेश के पाछू।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: हमन गोठ बात करत रहन संगी हुआ खरपतवार के नियंत्रण। किसान भाई बहनी मन अपन फसल बर कई ठन विधि ले अपना सकत है। खरपतवार नियंत्रण कर्षण यांत्रिक रसायन विधि ले नियंत्रण कर सकत है। फिर पारंपरिक विधि ले खरपतवार नियंत्रण करे मा लागत और समय अधिक ज्यादा लगते, यही पाए के रसायन विधि द्वारा खरपतवार जल्दी और प्रभावशाली ढंग ले नियंत्रित करे जाते। ए विधि हर आर्थिक रूप ले लाभकारी होते और कुछ सस्य क्रिया ले खरपतवार के प्रकोप ल कम करे जा सकते, जैसन के मृदा सौरीकरण ए तकनीक ल खेत में लगाए वाले पारदर्शी पॉलीथीन के सीट ला समतल नमी वाले माटी के ऊपर

0: हप्ता म फसल के बुआई के पहली मई महीना म 4 से 6 हप्ता तक फैला के माने बगरा के माटी के ऊपर के सतह म तापमान के बाहरी तापमान के तुलना म 8 से 20 ज्यादा करे जाते तापमान ला। ऐसन म माटी के ऊपरी सतह म जमो खरपतवार के बीज के अंकुरण शक्ति ह कम हो जाते, निष्क्रिय हो जाते। एक हर अलावा कुछ हानिकारक कीड़ा सूत्रकृमि और आने नाशक घलव मन नष्ट हो जाते। ये तकनीक पौधशाला में पौधा तैयार करत समय खरपतवार नियंत्रण पर बहुत प्रभावशाली होते। जीरो टिलेज तकनीक घलव हवाय। ये तकनीक हर खेत में बुआई के बेरा में विशेष मशीन जीरो टिलेज मशीन के द्वारा और खाद और बीज डाले जाते। एक हर पहली खेत में कोनो प्रकार के प्रयोग नहीं कराए। ये तकनीक ला गेहूं के फसल में करे जाते। ये तकनीक ले किसान मन लगभग 2500 रुपया प्रति हेक्टेयर कम लागत आते उनकर में। और गुल्ली डंडा नाव के खर पतवार है ये तकनीक में ये प्रक्रिया में कम होते। रासायनिक खर पतवार नियंत्रण खरीफ मौसम के फसल में प्रयोग करैया शाकनाशी रसायन धान में सीधा बुआई ब्यूटाक्लोर बुआई के एक दिन बाद और धान रोपाई में पाइराजो स्लोयुरान रोपाई के 1 से 2 दिन के अंदर में एकर उपयोग करे जा सकत है। धान फसल में नवा शाकनाशी यानी पाइरोजियो सल्फ्यूरान इथाइल के 2 मात्रा 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के प्रभाव सीधी बुआई और रोपित रोपा विधि ले धान के रोपाई के 10 से 20 दिन के भीतर में 20 से 25 ग्राम मात्रा हेक्टेयर पाछू प्रयोग करके खरपतवार ला नियंत्रित करे जा सकत है। शाकनाशी प्रयोग के बाद अपनाए सावधानी ला आप मन हा बढ़िया सावधानी से ये शाकनाशी के प्रयोग करिया उपयोग करिया। चिन्हित क्षेत्र में शाकनाशी ला एक समान छिड़काव करे बर स्प्रेयर के व्यास ला सावधानी ले ना पाए। दूसरा यह खेत में छिड़काव करे के लगभग आधा घंटा पहली शाकनाशी मन ला पानी में बढ़िया ढंग ले घोर के पानी ला घोर लेवाए बढ़िया से मिला लेवाए। तीसरा शाकनाशी ला स्प्रे छिड़काव बर फ्लैट फेन लोजन के उपयोग करें यानी बराबर वाले लोजन के। चौथा खरपतवार नाशी के छिड़काव बराबर मात्रा में करें कोहो कम ज्यादा झन हुए। रसायन के प्रयोग हर बच्छर में अदल बदल के करत रहना चाहिए। खरपतवार नाशी ला लैकन के पहुँच ले दूरिया रखें। वर्षा के संभावना होए एक हर छिड़काव झन करें। खरपतवार नाशी के उपयोग रेती खातु चाहे माटी मा मिझार के करना चाहिए। हवा के प्रतिकूल बहाव ला देख के छिड़काव करें। छिड़काव के बाद पाउच है डब्बा है पन्नी है इमन ला भुइया के भीतरी मा दबा देना चाहिए गाड़ देना चाहिए चाहे पाउच है ते मन ला जरो देना चाहिए। छिड़काव करे के बाद अपन हाथ ला बढ़िया ढंग ले साबुन हैंड वाश ले धोए। शाकनाशी छिड़काव करत समय सावधानी रखें कि हाथ में दास्ताना पहनाए जूता लॉन्ग बूट पहनाए चश्मा और मुंह में मास्क लगा के करना चाहिए। एक प्रकार के सावधानी करे संगी हुआ तब खेत हा बढ़िया हरियर हरियर और हरा भरा दिखी गई थे ना। स्वस्थ भुइया और खेत हरा स्वस्थ धरा और खेत हरा तो खेत हरियर तभे रही संगी हुआ जब पानी रही यो में पानी डारिया तभे तो हरियर हो है। तो हमन भेरी बेरी कथन कि पानी वर्षा के पानी ला अपन संग्रहित करके इकट्ठा करके रखा तभे खेत हा बढ़िया हरियर रही। और आज शुक्रवार संगी हुआ और आज के दिन फोन इन कार्यक्रम होते और फोन में आप मन अपन सवाल पूछ के समस्या के समाधान पाता। तो आज सुनबो फोन इन कार्यक्रम ला विषय है वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारियों से बचाव के उपाय। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आर एम त्रिपाठी संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के और कार्यक्रम के संचालन करत है हमारे महंगू भैया। आवा सुनी फोन इन
1: फोनिंग कार्यक्रम में आप जमो संगवारी मन के स्वागत हवे। महंगू भैया के राम राम जय जोहार। आज के फोनिंग कार्यक्रम के विषय हवे वर्षा ऋतु मा कुकुर मन मा होइया जौन आक्रामकता है कहे जाए अब जौन कुकुर काटथे जेमे होइया रेबीज बीमारी

0: के बचाव के उपाय का है, ये विषय में आज के जोन भी समस्या ही हमार पशुपालक मन के संगवारी मन के जेकर समाधान करे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमें डॉक्टर आर एम त्रिपाठी जी मन जो हमें उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली में। तो सबले पहली तो डॉक्टर आर एम त्रिपाठी जी आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे, आप मन राम राम।
1: राम राम भैया, राम राम।
0: सबले पहले ये बता कि खास करके वर्षा ऋतु में कहे जाए तो बरसात के मौसम में ये कुकुर मन में ऐसन आक्रामकता कहे जाए या फिर ऐसन का ऐसन हो जाते जिमे ये मन बादर पानी आई मौसम बिगड़ी तो इनको मौसम में बिगड़ जाते, का बात है?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और ये होता क्या है मांगू भैया कि जब वर्षा होती है तो उसके बाद में जहाँ ये कुत्ते आपस में बैठते हैं तो जब एक एक पानी गिर जाता है तो उनके बैठने की जगह जो है ना तो गीली हो जाती है। दूसरा गर्मी रहती है खूब गर्मी और फिर इधर नमी जाती है, गर्मी और नमी हो जाती है इनके, तो एक दूसरी बात ये होती है। इसके बाद जो है जो जहाँ वो बैठते हैं तो जब पानी गिरने लगता है तो कुछ दूसरे लोग भी आके खड़े हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे जगह पर आके क्यों खड़ा हो गया है। तो जैसे आदमी की एक टेरिटरी होती है, उनका एक वो दायरा होता है, उसी प्रकार इनका भी एक समूह का इनका एक दायरा होता है कि ये मेरे जगह है, मेरा यहाँ तक हिस्सा है, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, ये दूसरा आदमी यहाँ क्यों आ जाता है?
0: अच्छा,
1: ये साइकोलॉजिकल ये होता है। हाँ, ये कोई उसमें दूसरा हार्मोन की चेंजेस के कारण भी होता है। कभी कभी ये देख के फिर दौड़ाने लगते हैं। आप बरसात में देखिए, बरसात में सामान्यतः कुत्ते जो है ना रस्ते रास्ते चलते हैं, व्यक्ति को दौड़ाएंगे एकदम से, और बाकी समय वही कुत्ता बैठा रहेगा तो नहीं दौड़ाता है एकदम से। हाँ, और चार पांच के झुंड में होते हैं तो काट भी लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो उनको भी ये साइकोलॉजिकल एक बीमारी होती है। कोई बीमारी नहीं है, साइकोलॉजी उनके डिपेंड हो जाती है कि हमारे जगह पर ये आदमी आकर के क्यों इंक्रोचमेंट कर रहा है।
0: अच्छा, अच्छा,
1: तो इसलिए वो दौड़ाते हैं।
0: मतलब कहे जाए ऐसा मौसम में उनको मिजाज
1: बिगड़ जाता है। हाँ, क्योंकि गर्मी रही है, नमी भाई गर्मी हो तो उनका भी मतलब टेम्परेचर बढ़ता है और वो कुछ भी उल जलूर हरकत करते हैं।
0: और खास करके मैं देखे हूँ पानी गिरत में अगर बादल गरजत है तो ज्यादा एमन
1: वो भी एक है। ये इनका जो कान की सुनने की शक्ति होती है ना, वो हम लोगों से 10 गुना ज्यादा होती है। तो 10 गुना जब ज्यादा होती है, जो से जब बादल गड़कता है, बिजली कड़कती है तो हम लोगों को डर लगता है उससे, आवाज से इतना तेज और गरजना होती है। अब आप सोचो कुत्ते को उससे 10 गुना सुनाई देता है, वो तो उनको लगता है बड़ा भारी हमारे ऊपर आक्रमण हो गया,
0: काने में बाजा लगता
1: है, तो वो उसको प्रतिकार करने के लिए दौड़, वो भी मतलब वो करते हैं, दौड़ते हैं। ये इसका कारण होता है।
0: मतलब अभी तक हम सुंघेल जानत रहे एकर नाक कुकुर का शिकायत से के कहा नहीं भाई ज्यादा सुंघे के ताकत है का, तो उदाहरण देते नहीं
1: हाँ।
0: कि भाई एकर नाक है कुकुर का से बड़ा सुंघले थे एकदम, तो अभी तक सुंघे के जानत रहे। अब सुने के घला आप बड़ा अच्छा बताया है कि कुकुर मन में सुने के घला क्षमता ज्यादा होते, 10 गुना ज्यादा होते हमारे मन ले, तो वो तो काने में बजत ऐसे लगी है ना, तो वो जरूर वो जो बदला के भावना थे वो मन में आते है
1: हाँ,
0: ना। खास करके एक चीज और देखे गए है कि ए मन भाव ला घला समझते हैं बताए जाते,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये कैसे ढंग से जान डरते हैं मन?
1: ये इनके अंदर भी जो इसमें ब्रेन में जो सेंटर होता है ना,
0: अच्छा अच्छा,
1: तो कुछ कई चीजों को वो भी वो करता है, ग्राह्य कर लेता है। और वो भी जो केमिकल चेंजेस ब्रेन के होते हैं ना,
0: अच्छा, अच्छा,
1: वो इनको वो अपना मैसेज देता है ब्रेन के ये काम करना है।
0: अच्छा,
1: जैसे अपने को मैसेज मिलता है ब्रेन से, वैसे इनको भी मैसेज मिलता
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इसलिए जो है तो इसके अपने उसको प्रकट करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, सामने वाले के जो भाव
1: वो समझ जाते
0: हैं, डरा थे कि जानते
1: हैं
0: और नहीं डरा थे हमारे ऊपर ही। मतलब
1: आप सामान्यतः देखो जैसे हाँ, आपको कुत्ता दौड़ा रहा है और यदि चुपचाप खड़े हो जाओ,
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़े, पूंछ दबा के भाग जाएगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन यदि आप वो दौड़ा रहा तो और आप भागोगे तो वो समझ जाता है कि ये हमको डर रहा तो और दौड़ाएगा आपको। तो इसलिए जो है ना सामान्यतः जैसे कुत्ता दौड़ाए तो आप चुपचाप वहां खड़े जाओ, जैसे आप शेर हो,
0: अच्छा,
1: तो वो कुत्ता पूंछ दबा के भाग जाएगा फिर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब शेर ने सवा शेर गला भागना पड़ी है ना भाई। तो ये बचाव के थोड़ा उपाय अच्छा बताया। थोकन अव बता जैसन कि कुकुर लेकर बचना है तो थोड़ा अव उपाय थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो तो
1: सामान्यता ये प्रवृत्ति होती है कि यदि आप उसको छेड़ो नहीं
0: अच्छा अच्छा
1: तो वो आपको कुछ नहीं करेगा
0: और
1: छेड़ोगे तो अपना मतलब वो बचाव करने के लिए आक्रमण करेगा आपके ऊपर।
0: अच्छा
1: तो सामान्य रूप से यदि कहीं कुत्ता बैठा है या सो रहा है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। आप अपना रास्ते चले जाओ वो कुछ नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप छेड़ोगे तो फिर वो बदला लेने के दृष्टिकोण से फिर

0: आंखों पर आक्रमण करेगा।
1: अच्छा
0: हाँ, ये उसमें भी बदला लेने की भावना बहुत होती है एकदम।
1: अच्छा अच्छा, मतलब ये बात के ध्यान रखें कि कोनो चीज में अब गाड़ी जाता था तो गाड़ी लोग लगे मत। कभू कभू कभू एक बहुत पहली औरत है, कोई वही रंग के कहीं गाड़ी दिख गए, कोई कपड़ा पहने है तो वैसे नहीं पहने।
0: हाँ,
1: तो मन बहुत याद रखते
0: हैं। हाँ, याद रखते हैं, वो दौड़ाती
1: है गाड़ी ले, बहुत दौड़ाई एकदम, मतलब वो आदमी ले एकदम
0: पहचान के रखते हैं, पहचान करते हैं।
1: ये चीज तो देखे गए है, बहुत अच्छा ताड़े के बात बताया आपन। ये जौन कुकुर मन के आप बातला बताया, ये हमर सावधानी पर जरूरी है कि हम इस बात के सावधानी रखी। और ऐसा कुछ है क्या कि हम जैसे कहूँ जात हन अचानक तो कुछ आवाज देत हुए जान, या फिर हम तो जाना नहीं कि कुकुर है कि नहीं है, तो कुछ एकर बात भी है कि ये सावधानी अगर रखना है।
0: नहीं, अब
1: तो
0: जैसे आप जा रहे हैं कहीं
1: अचानक जाना कहीं,
0: सबसे उत्तम बात ये होती है कि आप जा रहे हैं, आप अपने काम से अपने रास्ते जाइए।
1: नहीं मतलब हम देखे नहीं है वहाँ पर है,
0: कुछ है
1: तो कुछ आहट करत हुई जाना भी अच्छा हो।
0: हाँ, कोई यदि कोई ऐसा मतलब ताक लिया, आप ये देख लिया कि ये हमारे पर आक्रमण करेगा,
1: हाँ,
0: तो आप अपने को बचाव करके निकलिए।
1: हाँ,
0: उसमें कोई दोराय नहीं, वो मतलब नहीं काटेगा आपको। लेकिन यही है कि जब आप आक्रमण करने आप उसको दौड़ाए तो आप खड़ा हो जाइए।
1: अच्छा,
0: तो वो समझ जाए कि हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो फिर पीछे हट जाता है।
1: अच्छा,
0: साइकोलॉजिकल होती है
1: ये। एक चीज वो है, खास करके कतको मन खिलाते गला, कुछ बिस्कुट खावाई तो कोनो कुछ खावाई, तो खाद बेरा कुछ बात क्या सावधानी रखना हुई।
0: देखिए, यदि आप उसको खिला रहे हैं और रोज खिलाते हैं तो उसको मालूम है कि हमको खाना खिलाना ही है।
1: अच्छा,
0: हमको रोटी देता है, हमको बिस्कुट देता है, हमको ब्रेड देता है।
1: डॉक्टर साहब, हाँ रुकबो, कोनो फोन आते। हेलो, कौन बोला था, कहाँ बोला था जी?
2: भैया मोर माया भरे, राम राम।
1: राम राम भैया।
2: हाँ भैया, मैं नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: नारायण नारायण नारायण, बतावा क्या पूछना चाहा था
2: ये भैया? जैसे हमारे आज डॉक्टर मन ले प्रश्न हवा
1: है,
2: एक कुत्ता मन में आक्रमक का होते, ये बरसात में काबर होते, और जैसे एक कुत्ता काटे ले दूसर कुत्ता भी हो जाते का, और जैसे आदमी मन काट दी भैया तो एक बीमारी ले हमन कैसन बच सकथन, यही जम्मो बात ला पूछे बर फोन लगाए हम भैया डॉक्टर मेरा।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया नारायण भाई आपने, और आक्रमक
2: भैया राम राम
0: राम राम। आक्रमकता के बारे में तो मैंने आपको बताया अभी कि ये कुत्ते जो होते हैं ना, तो जैसे बरसात शुरू होती है ना तो गर्मी और नमी दोनों रहती है, और बड़ा गर्म उसमें वो रहता तो ये थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं और काटते हैं। दूसरा, जैसे ये अपने इनको लगता है कि हमारे जगह में ये आदमी क्यों आ रहा है, हमारे जगह में दूसरा कुत्ता क्यों आ रहा है, हमारे जगह में गाय क्यों आ रही है, तो उसको भगाने के दृष्टिकोण से ये करते हैं, और जो समझ जाता हुआ कि ये कमजोर है तो उसको दौड़ा के काट भी सकता है। आपने जो दूसरा प्रश्न किया है काटने का, कि हमारे जानवरों काट लिया, तो यदि कुत्ता जो है ना गांव का आवारा कुत्ता है और वो आपके उसको पशु को काट लिया है, तो बिना चूके आप पहला काम तो ये करो कि निरमा लेकर के और थोड़ा सा जहां काटा है वहां पर डाल के और उसको पानी से धो, 5-7 बार निरमा डालो, 5-7 बार धो, और इसके बाद जो है ना आप सीधे उसको अस्पताल चले जाओ, अस्पताल से डॉक्टर को बुला के लाओ या डॉक्टर या अस्पताल ले जाओ, वहाँ सुई लगती है आजकल जो है ना, तो 5 सुई लगती है 0, 3, 14, 3, 7, 14 और 28 डेज में, तो आप उसको 5 सुई लगवा दो तो उससे जो है ना तो बीमारी नहीं होगी। दूसरा जो है ना, तो जैसे आपने एक प्रश्न और किया कि दूसरे कुत्ते में कोहच होता है, तो कोई दूसरा कुत्ता यदि आपके कुत्ते काटता है या कि आपका कुत्ता दूसरे कुत्ते काटता है तो उसको रेबीज हो सकती है। आपका कुत्ता यदि उसको पहले से रेबीज लगी हुई है तो उसको दूसरा कुत्ता यदि काटता है तो उसको रेबीज नहीं होगी, लेकिन आपका कुत्ता जिसके रेबीज लगी हुई है और वो एंटी रेबीज लगवा रखा है आपने, और दूसरे कुत्ते को काटता है जिसको एंटी रेबीज नहीं लगा है, तो उसको होने की संभावना रहेगी, तो उसको एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन कराना जरूरी होगा। तीसरा प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया कि यदि आदमी को काट ले, तो नारायण भाई आदमी को यदि कुत्ता काट ले तो बिना चूके उसको अस्पताल जाके इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि आपकी गाय या बकरी जिसको कुत्ता काटा है और आपने ध्यान नहीं दिया और उसको मान लीजिए कुत्ता काट के बाद आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया और उसको लक्षण रेबीज के हो गए तो वो मरेगा ही मरेगा, बचेगा नहीं। और मान लीजिए आपके बकरी या आपकी गाय या आपकी बैल या भैंसा कोई मर गया, बहुत कीमती होगा, 1,00,000 रुपए से ज्यादा कहीं नहीं होगा, 1,00,000 रुपए नुकसान होगा आपका। लेकिन मनुष्य को यदि काट दिया और उसका इलाज नहीं कराया, अपनी एंटी रेबीज नहीं लगवाया और उसको धोखे से भी कहीं रेबीज बीमारी हो गई, तो विश्व में कहीं भी उसके इलाज का कोई प्रावधान नहीं है, तो आदमी की जो जान है ना वो अनमोल है, उसको खरीदा नहीं जा सकता है। आप गाय भैंस बकरी तो खरीद सकते हो, लेकिन आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को, किसी व्यक्ति को काटा है समाज

0: के, तो उसको यदि रेबीज हो गई है तो दोबारा उसको फिर आप खरीद नहीं सकते उस जान को, वो जाना ही जाना है उसको। इसलिए किसी भी प्रकार से लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। यदि आदमी को कुत्ता काटता है तो उसका इलाज तत्काल अस्पताल जाके कराना ही चाहिए। लोग बाग झाड़ फूंक कराने के चक्कर में रहते हैं, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं मना करते हैं, आप अपने मन की संतुष्टि के लिए आप झाड़ फूंक कराओ, लेकिन अस्पताल जाके एंटी रेबीज उसको जरूर लगवाओ।
1: हाँ नारायण भैया।
2: हाँ भैया,
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपके थे, बढ़िया प्रश्न करता हो आप मन, आज फोन कर रहे हो ये विषय में, बहुत अच्छा जानकारी आप मन के माध्यम से उमल घला मिल गई सो है ना, तो ये सावधानी बड़ा जरूरी है भाई, है ना। तो नारायण भैया, समस्या के निदान तो हो गई सो आप मन के।
2: हाँ भैया बिल्कुल सही भैया।
1: हाँ आप मन फोन करे है नारायण प्रसाद वर्मा जी, एक बार आप मन बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया, और डॉक्टर भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम।
0: राम राम।
1: अभी जैसे कुकुर काटे के बात करते रहे, जैसे ऐसा कुछ देखें कि उनका मिजाज बदल रहा थे, तो अगर कहीं रेबीज वाला कुकुर है, पागल कुकुर कहे जाए, तो उकर कुछ लक्षण हुई का डॉक्टर साहब बतावन थोड़ा कन।
0: यदि
1: सामान्य अच्छा कुकुर, अब एक पागल और रेबीज वाला कुकुर के कुछ लक्षण तो हुई।
0: जब तक दो प्रकार के लक्षण रेबीज के होते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: एक वो कहते हैं डम्ब फार्म, जिसमें कोई लक्षण मतलब दिखता नहीं है, वो मतलब काटने भी नहीं दौड़ेगा आपको, सामान्य बैठा रहेगा।
1: अच्छा।
0: और कोई हरकत नहीं करेगा।
1: अच्छा।
0: और उसका जब आगे वाला स्थिति स्टेज आती है, तब उसको फ्यूरियस फार्म बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: इसमें वो आक्रामक होकर के बिना एम के काटेगा, किसी को भी काटेगा, चाहे अपना आदमी हो, जो पहचान वाला हो, मालिक हो, किसी को काटेगा ही।
1: अच्छा।
0: दो प्रकार के लक्षण होते हैं, डम फार्म और एक फ्यूरियस फार्म होता है। तो इसमें से कुत्ता जो है ना, जो सामान्य भी दिख रहा है, तो बर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है,
1: अच्छा,
0: वो ये कहती है कि सामान्य से दिखने वाला कुत्ता, जिसको आपने अपने उसके बचाव के लिए एंटी रेबीज का टीका लगा के रखा है,
1: अच्छा अच्छा,
0: यदि वो कुत्ता भी किसी को काटता है, तो उसको एंटी रेबीज का टीका आदमी को लगवाना चाहिए, या पशु जिसको काटता है उसको लगवाना चाहिए, क्योंकि रेबीज फ्री उसका लार नहीं होता है कभी।
1: अच्छा।
0: ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। 5% चांसेस उसमें रेबीज होने के रहते ही रहते हैं, और यदि उस कुत्ते को एंटी रेबीज नहीं लगी है,
1: अच्छा,
0: और वो किसी को काटता है, तो 100% वैक्सीनेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी स्थिति में यदि हम नहीं जानते कि हम कुत्ता जो काटा है किसी दूसरे कुत्ता है, अब क्या मालूम कि उसको मतलब रेबीज लगी कि नहीं लगी है।
1: हाँ।
0: तो एंटी रेबीज उसको यदि नहीं लगी है और या लगी भी है, तो अपने को अपनी सुरक्षा के लिए 5 इंजेक्शन लगते हैं आजकल, और वो लगवाना चाहिए। अब तो वो मसल्स में लगते हैं, पहले पेट के नाभि के दोनों पर लगाते हैं, तो वो 14 इंजेक्शन लगते हैं, अब बहुत पेनफुल होता था ये, तो वो जो है ना, तो अब नहीं होता है, तो आदमी को थोड़ा सा। दूसरी बात एक बार और बताऊंगा आपको मैं इसमें, कि जैसे खास करके चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, मुर्गी हो, चाहे आपका बकरी हो, चाहे आदमी हो, जितना ब्रेन के नीचे
1: अच्छा
0: काटेगा उतना ही मतलब टाइम लेगा।
1: अच्छा।
0: जैसे मान लीजिए मुंह में काटता है, तो बहुत जल्दी में उसके वायरस जो है तो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं।
1: अच्छा।
0: यदि पांव में काटता है, तो पांव से वो ब्रेन तक पहुंचने में टाइम लगता है। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसको 10 दिन तक देखना।
1: अच्छा।
0: लेकिन 10 दिन तक उस कुत्ते को देखने के बजाय, हम मान लो 10 दिन तक देखते हैं, 10 दिन बाद शुरू करते हैं एंटीरिबीज लगवाना।
1: अच्छा।
0: तो उतना समय तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा।
1: हाँ।
0: तो उस कुत्ते को 10 दिन देखने के बजाय जिस दिन कुत्ता काटा है उसी दिन से हम एंटीरिबीज लगाना चालू कर दें, और 10 दिन तक उसको देखते रहे एकदम से, कोई परेशानी नहीं है। उस समय तक 14 दिन इसका एंटीबॉडी बनने में लगता है, तो 14 दिन तक में एंटीबॉडी बन जाएगी,
1: बढ़िया,
0: तो हमारा बचत हो सकेगी। इसलिए आदमी को किसी भी स्थिति में यदि कुत्ता काटता है, तो बहुत देर करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको निश्चित रूप से समय रहते हुए टीका लगवाना चाहिए, पोस्ट बाइट टीका लगाना बहुत आवश्यक है।
1: अब कुछ लक्षण दिखत हुई का, आंखी लाल लाल दिखत हुई, अगर रेबीज वाला कुकुर है तो पागल कुकुर कुछ दिखते कुछ लक्षण?
0: अब इस तो ये लार बह रहा
1: है तो आप कह दिया,
0: ये नहीं समझ में आता है,
1: नहीं समझ
0: में आता है वो। और जैसे मनुष्य में उनको काट दिया और वो टीका नहीं लगवाया, तो उसमें लक्षण दिखते हैं जो, तो वो भी आंख बड़ी बड़ी दिखती है, और वो अब बोलने की कोशिश करता है, तो उसकी मसल्स क्योंकि गले की पैरालाइज हो जाती है इसमें, तो इसलिए वो बोल नहीं पाता, इसलिए वो करता है, तो लोग कुत्ते जैसी आवाज निकाल रहा है।
1: अच्छा।
0: वो पानी नहीं पी पाता है क्योंकि मसल पैरालाइज हो जाती है, तो पानी या दाना कुछ निकल नहीं सकता है, उसकी मसल जो होती है सब धीरे धीरे अकड़ जाती है, और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है।
1: अच्छा। पानी डराते गला कुछ,
0: ये इसी कहते हैं पानी से डरता, पानी से डरता है, प्रकाश से डरता है, कोने में जाके छुपता है, वो इसका कारण परेशानी यही है कि वो चल फिर सकता नहीं तो अंधेरे में चुपचाप जाके बैठा रहेगा एकदम से।
1: अच्छा।
0: अब खाना पीना मस्सी पैरालाइज जाती है, गले की जो मांसपेशियां पैरालाइज जाती है तो लकवा मर जाता है उनको, तो वो पानी नहीं पी सकता है, खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है,

0: हैं, और वो ऊ करके अपने एक्सप्रेस करता है, तो उस आवाज इससे निकलती है कि वो लगता है कि हमको काटने दौड़ रहा है।
1: अच्छा,
0: तो वो पता इसका कंफर्म लक्षण है कि ये इसको रेबीज बीमारी हो गई।
1: अगर रेबीज बीमारी वाले मन के जूठा खा लिए जाए तो कुछ हो सका थी का?
0: देखिए, जूठा यदि आप खा लिए हैं,
1: संपर्क में
0: हैं आप,
1: हाँ,
0: यदि उसके उसमें खाने जिससे वो खा रहा है और आप भी खा रहे हैं उसको, तो निश्चित तौर से रेबीज आपको होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपके स्क्रेच है मुंह में या कहीं, तो वो वायरस जो लार में जाते हैं वो पहुंच जाते हैं, वो अपने को नुकसान कर सकते हैं। एक मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहां एक हमको पेपर प्रेजेंट किया हुआ था, उसको मैं एक आपको बताता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: कि एक माँ ने उसके लड़के को स्कूल गया था, वो काट दिया कुत्ता काट दिया, तो आया अपना इंजेक्शन लगवाया, उसने लगवाना चालू किया। माँ ने उसके कुत्ता जहां काटा था पैंट में, उसको पैंट को धोया नहीं था, बिना धोए वो सुई लेकर के उसको सिलाई कर दी, उसकी जो सुई थी ना वो सिलते वक्त उसके उंगली में लग गई, और इसके बाद वो उसकी भी भूल गई कि अपना मतलब सिलाई हो गई। और सामान्यता क्या करते हैं कि जैसे धागा सिलाई बढ़ जाए तो दांत से दो काट देते हैं, उन्हें दांत से काट करके अलग कर दिया।
1: अरे,
0: इसके अलावा लड़का जिसको काटा था उसको तो उन्हें पोस्टबायोटिक इंजेक्शन लगवाया, उसकी जान बच गई, और माँ जो नहीं जानती थी,
1: अच्छा,
0: सुई जिसके हाथ में घुस गई थी, वो उसको रेबीज हो गई, और रेबीज हो गई वो अकाल मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से अपने को किसी भी स्थिति में यदि ये सस्पेक्टेड है वो, तब भी कंफर्म है तो छूने खाना नहीं है,
1: अच्छा,
0: और ये सस्पेक्टेड है तो भी उसको जो है ना तो अलग रखना चाहिए, उसका खाना दाना चारा पानी जो कुछ भी है सब अलग रखो, उसके मरने के बाद सबको जला दो आप।
1: अच्छा अच्छा,
0: जलाना ही इसका उपाय रहता है, या कि जमीन में गड़िया दो आप।
1: अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा अच्छा, ये कुकुर मन के जैसे लार्ले होते कि था अपन, तो ये लार्वर कैसे बचाएं, मतलब जैसे पाल रहे हैं तो, या तो नहीं है बाहर, हम कुछ खाना पीना दे देते हैं तो कभी कभी हाथ ले चाट दी फिर हम खाना खाथन, तो क्या कुछ ये कर?
0: इसमें बहुत अच्छा ये भी प्रश्न आपने आप मगो भी आप,
1: हाँ हाँ हाँ।
0: होता क्या है कि सामान्यतः जो कुत्ता को पालते हैं, और आजकल के तो लोग जो अच्छे नस्ल के कुत्ते पालने लगे हैं तो बड़ा लाड़ प्यार करते हैं, भले वो अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार न करें,
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन कुत्ते का भारी लाड़ प्यार करते हैं,
1: हाँ हाँ।
0: तो उसको हाथ से खाना खिलाना, उसको हाथ से दवाई खिलाना, उसको मतलब गोदी में लिए रहना, ये सब आजकल के समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। तो किसी भी स्थिति में आप लाड़ प्यार करिए, उसको खाना खिलाइए और उसको दवाई खिलाइए, उसके मुंह में हाथ डाल के आप खिला रहे हैं, और जो कुत्ता आपका समझदार है, सीख गया है, आपको खाना खा लेता है, आपको काटता नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसके बावजूद भी जब ये सब खाना पीना खिला चुके हैं आप, तो उसको आप साबुन से अपने हाथ को धोइए।
1: अच्छा,
0: साबुन से हाथ धोने के बाद ही अपन खाना पीने खाने बैठिए, दो बार तीन बार हाथ धोना चाहिए। किसी भी स्थिति में जो है ना, तो अब चलो हमारा कुत्ता है, बड़ा लल्लू है, पंजू है, हमारा रिंकी है, पिंकी है, सिंकी, आज उनका सीधा नाम रखे, बड़ा प्यार करते हैं, और बिना हाथ धोए खाना खा जाते हैं। आज के समाज में बड़ी विकृति हो गई है, तो किसी भी स्थिति में यदि सब आप करते हैं, कुत्ता पाल कर रखे हैं, वो भी जीवन का जीने का हक है, आप उसको दया मया सब कुछ करिए, लेकिन अपने बचाव के लिए अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने हाथ पांव को धो करके बढ़िया साबुन से सैनिटाइज करके इसके बाद ही अपना खाना पीना खाइए आप।
1: ये टीकाकरण कराने से, मतलब रेबीज के जो टीका लगाए से भी लार में से नहीं जाए कहा था अपन?
0: हाँ, 5% चांसेस, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इसमें चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसके लार
1: में जरूरी है,
0: तो सावधानी बहुत जरूरी है,
1: लार से सावधानी जरूरी है। दूसरा ये बात है कि टीका है जो रेबीज के है, हम कुकुर पालते हैं तो कब कब लगवाना चाहिए?
0: ऐसा है मगू भैया कि जब छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको हम घर में लाते हैं, तो 1.5 महीना में आजकल बीमारियों का टीका लगता है, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है, उल्टी, दस्त, कैनाइन डिस्टेम्पर और इन्फ्लुएंजा, दुनिया भर की बीमारी होती है, तो 7-8 बीमारियों का टीका एक में आता है, तो 1.5 महीने के अवस्था में उसको लगाते हैं, 1 महीना बाद उसका बूस्टर डोज लगाते हैं ताकि उसकी बीमारी से बचाव हो।
1: अच्छा।
0: और इसके बाद फिर उस टीका को साल भर में लगाना चालू करते हैं। रेबीज का टीका जैसे आज 3 महीने के कम के एज अवस्था में नहीं लगता वो।
1: अच्छा।
0: 3 महीना तक का जब होगा तभी लगेगा वो।
1: अच्छा।
0: 3 महीना की जब उसकी अवस्था हो जाएगी तब उसको पहला टीका लगता है।
1: अच्छा।
0: उसका जो रिपीटिशन होता है वो 6 महीने में होता है।
1: अच्छा।
0: और इसके बाद फिर हर साल होता है।
1: अच्छा।
0: साल में फिर लगाते रहना चाहिए।
1: वर्ष भर में एक बार लगना है।
0: एक बार लगना है।
1: रिवीज के।
0: हाँ, रिवीज का। उसके बाद जो है तो चांसेस बहुत कम होते हैं रिवीज होने के।
1: मतलब ये जरूरी है आप साल भर में,
0: साल भर में एक बार जो है ना
1: समय नोट कर लेना।
0: हाँ,
1: है ना, अपन डायरी
0: कार्ड बनता है, कार्ड बनता
1: कार्ड बना तो
0: हाँ, जो डॉक्टर लोग लगाते अच्छा। हैं जहाँ लगवाएंगे आप वहाँ कार्ड बनता है,
1: ऐसे
0: वो कार्ड बका दिए आपने अपने अपने पास रखिए,
1: समय से लगा ले जाए,
0: और उसमें लिखा रहता है अगला टीका कब लगेगा,
1: तो मान ले वो भुला गए तो कुछ
0: कोनो बात नहीं रहता। आप मान लीजिए 1 साल में 10-5

0: अदा हो गया तो वो साल भर के अंदर बूस्टर करने के लिए उसको लगाते हैं ताकि अच्छा। उसकी इम्यूनिटी और बूस्ट हो जाए
1: ऐसे।
0: तो 10-5 दिन आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई दस दिन पहले भी लगवा सकते हैं 10-5 दिन बाद भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा हाँ, डर नहीं,
0: हाँ, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं।
1: अब कुकुर काटे के तो रेबीज के सब बात तो कर देन, ये बचाव बर सावधानी बर कहे जाए तो थोकन औ बताह कि ये बीमारी से बचाव बर जैसे औ का सावधानी रखे मर।
0: अब ये ऐसा है कि जैसे जैसे आज की बात तो नहीं है, बहुत सदियों से लोग कुत्ता पाल रहे हैं। आपने सुना होगा महाभारत प्रसंग में भी कि महाराज युधिष्ठिर भी कुत्ता पाले थे, वो जब गए थे साथ में कुत्ता गया था उनके। तो कुत्ता जो है ना अपने रखवाली के लिए लोग बात पालते हैं कि हमारे घर की रखवाली करता है। रखवाली क्या करता है, आहट जो है ना, जिससे हमने आपको पहले बताया कि इसकी सुनने की क्षमता बड़ी तेज होती है, जरा सा भी पांव की कहीं सर खुर आवाज आई वो जग जाता है और जग करके वो उसको चिल्लाने लगा, भौंकेगा, तो मालिक को पता चल जाता है कि ये मतलब कोई हमारे घर में आ रहा है।

0: आठ जो है ना, जिससे हमने आपको पहले बताया कि इसकी सुनने की क्षमता बड़ी तेज होती है, जरा सा भी पांव की कहीं सर खुर आवाज आई वो जग जाता है और जग करके वो उसको चिल्लाने लगा भौंकेगा, तो मालिक को पता चल जाता है कि ये मतलब कोई हमारे घर में आ रहा है। तो चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे आदमी हो, कोई भी आता है तो उसको वो भौंक करके जगा देता है, अलर्ट कर देता है कि तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आ रहा है। तो उस दृष्टिकोण से हम कुत्ता पालते हैं।
1: अच्छा,
0: अब कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता को पालने के बाद जो है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके रख रखाव का भी ध्यान रखें, क्योंकि यदि हम रख रखाव का उसका ध्यान रखेंगे, समय समय टीकों को लगाते रहेंगे तो उसको बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी तो किसी को काटेगा तो उसको बीमारी नहीं होगी। तो इसका मतलब ख्याल हमको जो है ना रखना बहुत जरूरी है। और इसमें से जो है ना तो जो शुरुआत से पालते हैं,
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं। आजकल तो बड़ा बहुत अच्छा अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, विभिन्न प्रकार के चोरों को पकड़ने के ट्रेनिंग देते हैं। वो कैसे वो उसको उठा के ले गया, उसको जाके वो फिर सूंघ के आता है, पता लगा लेता है कि फलाने आदमी चोरी किया है। तो बहुत उसका बहुत उपयोग है, खास करके अब हम लोग जो है ना तो चूंकि हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, हम उतना उसका वो नहीं जानते हैं, लेकिन इनका उपयोग जो है ना अपनी जो सेना, भारतीय सेना है, उसमें बहुत तगड़ा उसका उपयोग है और उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है उनके वहाँ। और उनको ट्रेनिंग के साथ साथ में उनका जो खान पान सब उसको बहुत विशेष ध्यान देते हैं वो, और सब प्रकार की मतलब जिस किसी प्रकार की बीमारी ना हो उसको ध्यान रखते हैं, और बीमारी के साथ में कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो उसका इलाज का ध्यान रखते हैं। सर्जरी होती है उनकी, विभिन्न प्रकार सर्जरी होती है। आजकल तो हमारे यहाँ जो है ना तो इसके लिए आपने सुना कि कैट स्कैनिंग होती है, इसमें एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI, ये सब होने लगी हैं। तो मतलब ये सब चीजों को तो उनके विभिन्न प्रकार के जो उनके बचाव के
1: जब ये सब सुविधा मिल गए है तो पालना भी चाहिए, कह जाए
0: पालना भी चाहिए।
1: पाला थे तो रक्षा बर पाला थे अपन, तो भक्षक मत बने, मतलब रेबीज से बचे जाए।
0: और जिससे ये दो आवारा है ना, इनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना तो जिससे शासन बहुत प्रयास कर रही है,
1: ये फोन आते उचाले थन
0: बिल्कुल।
1: कौन बोला था, कहाँ ले बोला था जी?
2: मैं हर भगत राम पटेल बोला था भैया, सिंगारबाड़ी घुटकुले।
1: भगत राम पटेल जी, बतावा का समस्या है, आप मन फोन करे एक बार, अपन के बहुत बहुत स्वागत है।
2: आप मतलब आज के कार्यक्रम और डॉक्टर साहब जी मतलब राम राम जान
0: राम राम राम राम।
2: हाँ, हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जिसे घुमंतु जानवर जिन होते, जिसे कुकुर होते और जैसे बिलाई होते, बहुत सारे जानवर होते, और ये मन हर एक प्रकार से लड़का मन जिन है उनकर करीबी में काफी रखे, तो ऐसा स्थिति में अगर कहीं कुत्ता जिन है आवारा कुत्ता काटा से बाहर के क्या पोसवा कुत्ता, तो ऐसा स्थिति में हमला प्रारंभिक उपचार के साथ आगे का कर रहे हैं, जेकर बारे में जानना चाहते रहे।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया भगत भाई आपने। ये जो है ना, जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो खिलवाड़ करते रहते हैं, छोटे बिल्ली से खिलवाड़ करते रहते हैं, कुत्ता से खिलवाड़ करते रहते हैं, और खिलवाड़ करते करते वो कभी नाखून मार देता, कभी काट देता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके घर में किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काट दिया है तो उसको थोड़ा सा निरमा ले, निरमा साबुन ले, उसको 5-7 बार जहाँ काटा वहाँ उसको साफ करो बढ़िया, 5-7 बार निरमा साबुन लगा करके या निरमा लगा करके उसको पानी से बढ़िया धो दो, तो उससे जो लार में उसके वायरस होता है वो न्यूट्रलाइज, वो डाइल्यूट हो जाता है, जल उससे बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके निरमा में सब क्षारीय गुण होते हैं, तो क्षार जो है उसको मारता है। इसके बाद जो है ना फिर आप तत्काल जो है ना उसको अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाकर उसको इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन जो है तो पहले दिन लगता है, फिर चौथे दिन लगता है, फिर 8वें दिन लगता है, फिर 15वें दिन लगता है, फिर 29वें दिन लगता है, तो ये 5 इंजेक्शन उसके लगते हैं। तो 5 इंजेक्शन यदि आप लगा दोगे तो फिर उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, ना बच्चे को होगी आपके और ना सियान जो जिसको काटा होगा उसको होगी। यही
2: डॉक्टर साहब, वो बच्चा से हम उनका और बाकी ये हमारे परिवार ओला दूरी बना कर रखें, कौन सा सावधानी
0: नहीं, कोनो जिसको बच्चे को काटा उससे दूरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप तो बच्चा हो चाहे आप सियान हो, जिसको काटा उसको दूरी बना के कैसे रख सकते हो आप, इतने कम समय में उसको रेबीज थोड़ी होता हो, और पर रेबीज के होने के लिए न हो इसलिए आप उसको रेबीज का एंटी रेबीज का टीका लगवा रहे हो। तो टीका लग रहा है तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा ना, इसलिए तो उसको बच्चे को अपने पास रखना है और उसको समझाना है कि मतलब कुछ होगा नहीं तेरे को, नहीं कुछ लोग क्या होते हैं डर के मारे उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है।
2: यही सार बात है डॉक्टर साहब, उसके कारण मैं प्रश्न कर रहा हूँ आप मन के पास।
0: नहीं बहुत अच्छा भाई, आप प्रश्न करते रहते हो, खास करके हमसे बहुत प्रश्न करते हो। मेरे खुशी होती है कि भगत भाई जब हम आते हैं स्टूडियो में तो प्रश्न जरूर करते हैं।
2: डॉक्टर साहब कहते ना कि जितके दही ले मथिया ना उतके अच्छे लेना, और घी निकलते। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप मन की जो जानकारी है।

0: आकाशवाणी की जेन सुंदर जेन परोस के लाते ना हमारे लिए बहुत कारगर रहते हमारे माध्यम से आओ संगीत साथी मतलब इनसे कर लिए आप मतलब गाड़ा गाड़ा बधाई जय जोहर राम राम
1: राम राम राम राम।
2: बहुत अच्छा प्रश्न करे है एक बार भगत राम पटेल जी आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक बात मैं और बताना चाहूंगा मांगो भैया आपको हाँ। किसी गाय को या बछिया को कुत्ता काट देता है और जो गाय बछिया लोग पालते हैं खास करके महिलाएं बड़ा उनसे अटैचमेंट रहता है तो जब उसको रेबीज हो जाती है तो उसको बचाव करने के लिए लोग बाग जड़ी बूटी दवाई ये वो सब खिलाते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से ही आग्रह हुआ कि जब ऐसे पशु जिनको रेबीज हो गई है वो मारने दौड़ने लगे हैं खाना नहीं खा रहे हैं पानी नहीं पी रहे हैं उनको माया के कारण उसके मुंह में हाथ डाल के दवाई खिलाना जड़ी बूटी खिलाना ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में उसके मुंह में डाल के कोई दवाई ना खिलाएं क्योंकि अपनी जान पहले बचाएं उसकी जान तो जा ही रही है तो अपना जान बचाना बुजुर्ग होता है इसलिए वहां पर माया न दिखाएं किसान भाई हमारे नहीं तो उनके जीवन के लिए भी खतरा हो सकता
2: है। बहुत अच्छा विषय रही सब है। वर्षा ऋतु में कुकुर के आक्रमकता और कुकुर के काटे वाले रेबीज बीमारी के बचाव के उपाय अपन बताया है ये विषय में जानकारी दिया जो भी फोन आई एक समाधान करे हमारे संगवारी मन के हमारे स्टूडियो में आया जानकारी दिया एक बार डॉक्टर आर एम त्रिपाठी जी आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मंगू भैया।
2: आज के रिकॉर्डिंग में तकनीकी सहयोग दे सौरभ केसरवानी जी मन इस संग तविदा मंगू भैया के राम राम जय जोहार।
4: अभी सुने हन फोन इन कार्यक्रम विषय रही से वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज बीमारियों से बचाव के उपाय और जानकारी विशेषज्ञ रही है डॉक्टर आर एम त्रिपाठी संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के और कार्यक्रम ला संचालन करत रही हमार महंगू भैया। तो अब कार्यक्रम आगू बढ़बो संगी हुआ और बात करबो आज के मौसम के तापमान के तो अधिकतम तापमान रही 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस कहो हल्का बारिश होए के संभावना हवा संगी हुआ। और अब मंडी भाव बता देथन रमकेरिया रही 3100 ले 3800 रुपया कुंटल और अब संगी हुआ बेरा हो गए घर जाए के तो जम्मो कार्यक्रम सुनैया भाई बहनी मन फुलवा बहनी ला देवा विदा राम राम जय जोहार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों के साथ हम बने हुए हैं लगातार आपके साथ। इस वक्त रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में संसद समीक्षा का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: वाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है।
केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है। इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे

सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारी सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा।
इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर

0: सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akash.
2: संसद समीक्षा का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का महकता हुआ सलाम। श्रोताओं, अपने देश से प्रेम करना, उसके प्रति आस्था एवं अनुराग रखना और कर्तव्य परायण होकर सदैव उसके हित में कार्य करते रहना देशभक्ति कहलाती है। लेकिन देशभक्ति की परिभाषा यहीं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर वो सच्चा कार्य जो पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ किया जाता है, वही देशभक्ति के दायरे में गिना जा सकता है। वैसे अब तक साहित्य, संगीत, सिनेमा और रंगमंच ने अनगिनत ऐसे लोगों की देश के प्रति प्रतिबद्धता और अनुशासन के उदाहरण पेश किए हैं, जिनके लिए राष्ट्र का हर व्यक्ति प्रेम और सम्मान से

उनका नाम लेना पसंद करता है जो इन कलाओं से जुड़े हुए हों। बहरहाल आज रजनीगंधा कार्यक्रम के इस सफर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धरती के पुत्र कहलाए जाने वाले अभिनेता की, जिन्हें देशभक्ति पर केंद्रित अनगिनत फिल्में करने के लिहाज से उनके चाहने वाले उन्हें अक्सर भारत कुमार कहकर पुकारते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आज सुनते हैं देशभक्ति के जज्बे में भीगे इस बेहतरीन से देशभक्ति गीत को, और फिर करते हैं आगे की बातचीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हरी कृष्ण गिरि गोस्वामी यानी लोकप्रिय भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, संपादक, संगीतकार मनोज कुमार के विषय में। मनोज कुमार ने भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में अनगिनत सफल और बेहतरीन फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय का प्रदर्शन पेश किया है और घर घर में सराहे गए हैं। सूत्र बतलाते हैं कि अपने युवावस्था के दौरान मनोज कुमार दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल जैसे कलाकारों के अदाकारी को बेहद पसंद किया करते थे और स्क्रीन पर इन्हें देखकर इनके जैसे बनने का सपना संजोते थे। मनोज कुमार इन कलाकारों के सच्चे प्रशंसक हुए। मनोज कुमार ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई पूरी की। फिल्मों के प्रति गहरी अभिरुचि और मोहब्बत के कारण इन्होंने अपना नाम ही बदल दिया, यानी हरी कृष्ण गोस्वामी को बदलकर इन्होंने अपना प्यारा सा नाम रखा मनोज कुमार, ताकि लोगों को इन्हें पुकारने में आसानी हो। आइए इन्हीं पर फिल्माए गए एक और बहुत प्यारे से गीत को इस वक्त सुनते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में इस वक्त हम बात कर रहे हैं भारत कुमार कहलाए जाने वाले लोकप्रिय अभिनेता मनोज कुमार के विषय में। जी हाँ, मनोज कुमार ने बतौर निर्माता निर्देशक अलग अलग मूड, अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग जॉनर की फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम उन फिल्मों का जिक्र करना चाहेंगे जिन्हें मनोज कुमार ने अपने सूझबूझ के साथ निर्देशित किया पर्दे पर। याद कीजिए, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, पूरब और पश्चिम, उपकार, शोर, जय हिंद और कल क्लर्क जैसी फिल्में। मनोज कुमार के फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि इन्होंने किसी एक विधा को पकड़कर कभी भी अपनी कलाकारी की प्रस्तुति नहीं दी। इन्होंने हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया, अपने हुनर को, अपने शौक को, अपनी परिकल्पनाओं को नई और सच्ची उड़ान पेश की और कहलाए गए सभी के प्रिय अभिनेता। सिल्वर स्क्रीन पर इनकी सादगी देखते ही बनती। हर एक कलाकार, खासकर फीमेल कलाकार के साथ इनकी जोड़ी उभर कर सामने आती रही। आइए सुनते हैं एक और बहुचर्चित गीत जिसे फिल्माया गया था मनोज कुमार पर।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में मनोज कुमार के उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। 2015 में सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी मनोज कुमार विभूषित हुए। उन्हें एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। आज भारत कुमार यानी मनोज कुमार का जन्मदिन है, तो हम उनकी यादों को आज पुरसकून इस महफिल में याद किए जा रहे हैं।

श्रोताओं, जब जब गांव की मिट्टी, चौपाल, मेड़, खेत, बैलों की घंटी और देश प्रेम की भावना की बात चलेगी, तब तब हमें मनोज कुमार याद आएंगे। जब जब फिल्मों में उनके अनूठे अंदाज को नई पीढ़ी पर्दे पर देखेगी, तो यकीनन मनोज कुमार की सादगी और कला के प्रति उनका समर्पण याद आएगा। ये प्रेम का पुजारी, ये अब अनोखा, अद्भुत और अविश्वसनीय, अकल्पनीय अभिनय करने वाला इंसान हमेशा जीवित रहे। इनकी यादें हमें हमेशा

श्रोताओं, आज मनोज कुमार के जन्मदिन के साथ कार्यक्रम में जो एक देशभक्ति के जज्बे की एक भावनात्मक जागरूकता की भावना जागृत हुई है, उसी लौ को थामे हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि विभिन्नता में एकता हमारे राष्ट्र और संस्कृति की धरोहर है, और इसी विविधता की कई मिसालें हमको और आपको हमेशा पर्दे पर भी देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। सिल्वर स्क्रीन की जगमगाहट में चमकते ऐसे सितारे हैं जो बहुत सारी रोशनी के साथ हमेशा चमक अपनी बरकरार रखते हैं। आज पुण्यतिथि है अमानुष और दूरियां जैसी फिल्मों के अभिनेता और अनोखे अदाकारी के दिग्गज कलाकार, बांग्ला फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता जिन्हें उनके चाहने वाले महा नायक कहकर सम्मान देते रहे। जी हाँ, महानायक, महानायक कहकर सम्मान देते रहे, इज्जत देते रहे, आदर और प्रेम करते रहे। उनका है आज याद का दिन, यानी उनकी पुण्यतिथि है। हम बात कर रहे हैं उत्तम कुमार की, जिनका वास्तविक नाम हुआ अरुण कुमार चटर्जी। उत्तम कुमार को भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे चमकदार और आधुनिक नायक माना गया। उत्तम कुमार ने लगभग 3 दशकों तक सिनेमा जगत पर राज किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई अन्य सम्मान से ये सम्मानित भी हुए। उत्तम कुमार ने बांग्ला फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। शर्मिला टैगोर और सुचित्रा सेन के साथ इन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि पर उन्हीं पर फिल्माए गए इस गीत के साथ हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

0: श्रोताओं, रजनीगंधा के आज के सफर में हमने बातें की हैं मनोज कुमार के जन्मदिन पर और उत्तम कुमार की पुण्यतिथि पर। उम्मीद है हमारी छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप सभी स्वस्थ रहें और हमसे यूं ही जुड़े रहें और हमारे और आपके बीच का ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। इसी नोट पर दीजिए विदा आपकी अपनी अंतरा को। नमस्कार। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और

0: नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों

0: मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार।

0: अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both houses of parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड डॉक्टर जी

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना, बोल इंदिवर के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था अनामिका। आपके लिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, खय्याम साहब का संगीत, जानिसार अख्तर के बोल, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम रजिया सुल्तान।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। हाँ हाँ।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की

0: रहेंगे ऐ वतन।
1: मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

0: रहा था।
1: सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

कार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। ये फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आईं जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

0: करेंगे।
1: क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: करता हूँ।
1: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: श्रोताओं आइए इस वक्त जुड़ते हैं विविध भारती से।
1: किसी न किसी वस्तु से भी गाढ़ा प्रेम होता है, उस वस्तु के लिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि कई बार अपनों से भी ज्यादा उस वस्तु विशेष का ख्याल रखा जाता है। पर अगर वो खो जाए तो

सामान जो हमें सबसे प्यारा हो हमसे दूर हो जाए, खो जाए, तो मानो हर रिश्ते नाते सुख सुविधा के बाद भी हमें चैन कहाँ। उसकी खोज में खुद तो लगते ही हैं, अपनों को भी लगा देते हैं।

0: तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि संभाल कर रखी चीजें ही सबसे ज्यादा गुम क्यों होती हैं, और ये गुम हुई चीजें आखिर जाती कहाँ हैं? क्या वो कहीं छुपकर हमें देखती रहती हैं, हमारी परीक्षा लेती हैं कि हम उनकी परवाह करते भी हैं या नहीं?
1: तो बेच

कई बार हमारे सामने दुनिया जहान की चीजें रखी होती हैं, पर मन मन तो वहीं अटका है उस गुम हुई चीज के साथ। सोते जागते उठते बैठते बस एक ही ख्याल कि आखिर वो गई तो गई कहाँ।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या गुम हुई चीजें भी मेले में गुम बच्चे की तरह घर लौटने को बेताब रहती होगी? क्या वो भी मिलने वाले को अपने मालिक का अता पता बताती होगी? फिर कुछ इस तरह होती होगी घोषणा,

0: सारी चीजें जैसे ही किसी को मिलती है उनकी खुशी भी देखते ही बनती है। शायद उन्हें भी याद आ जाती हैं अपनी गुम हुई चीजें, तभी तो वो झूम कर बताने लगते हैं मिली हुई चीज का हाल, खोजने लगते हैं उनका पता जिसकी है ये चीज।
1: मिला

एक बार जो गुम हुई चीज मिल जाए तो यूं लगता है जैसे सारी उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। इस जहान में कुछ भी नहीं है नामुमकिन, बस शिद्दत से खोजा जाए तो मिल सकता है कुछ भी। दिल का चैन, खुशियां, सुख, मन की शांति, और दिल कह उठता है तुम जो

0: श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के इस वक्त 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी